0: 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में।
1: और आजीविका कार्यक्रम में हम अपने श्रोता साथियों के लिए ऐसे व्यवसाय के बारे में बताते हैं जो हमारे श्रोता साथी इन व्यवसायों को कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं।
0: अरे लेकिन हम लोग बताना भूल ही गए हैं कि आपके साथ इस समय मौजूद हैं आपके अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और साथ में है मनीष।
0: और कार्यक्रम आजीविका आप लोग सुन ही रहे हैं और आजीविका कार्यक्रम में हम लोग बात करते हैं अपने आजीविका से जुड़ी हुई बातों को हम लोग करते हैं इस कार्यक्रम में, जैसे कि कोई बैंक की योजना अगर हो या फिर कोई नया व्यवसाय हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, कुल मिलाकर अपनी पूरी आजीविका से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम होता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है कि हमारे श्रोता साथी सबसे ज्यादा इस कार्यक्रम को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन करें, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल गई है इस क्षेत्र में, तो बेरोजगारी को देखते हुए हम अपना स्वयं का व्यवसाय कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है कि व्यवसाय को कर सकते हैं, लेकिन मनीष जी अभी अगर कहा जाए हम लोग सोचेंगे नहीं कि किस तरह से हमें एक नया व्यवसाय करना है, उस तरीके से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते और अपनी आजीविका को चलाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो हमें ढूंढना चाहिए। तो देखिए मनीष जी, अभी सुबह की हम अगर बात करें तो सब्जियों की बात जहां तक आती है तो हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है सब्जियों का व्यवसाय।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि हम और आप देखते हैं और इस बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा सब्जी उगाई जाती है, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं आइडिया ये आया है कि हम किस तरीके से सब्जियों का व्यवसाय करके हम अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखते हैं कि यदि हम सब्जी तो एक तरफ होती है, यदि हम दूसरे पद्धति से यानी ऑर्गेनिक पद्धति से यदि हम सब्जियों को उगाएं और उसको पैकिंग कर हम बढ़िया तरीके से उसको बेचे, तो इसमें दाम जो रहते हैं, जो सब्जियां आती हैं उसकी सब्जी और जो ऑर्गेनिक सब्जियां रहती हैं उनके दामों में काफी फर्क रहता है। तो हम भी ऑर्गेनिक पद्धति से यदि हम खेती कर और सब्जियां उगाकर हम अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा है मनीष जी आपने, क्योंकि देखिए हमारे किसान साथी यही सोच रहे होंगे कि क्या हम सब्जी का व्यवसाय नहीं करते हैं या फिर खेती नहीं करते हैं, तो ये सही बात है, आप लोग करते हो, बहुत अच्छे तरीके से करते हो। लेकिन अगर ऑर्गेनिक तरीके से आप अगर सब्जियों का व्यवसाय करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑर्गेनिक तरीका क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो साथियों ये जो कार्यक्रम है वो हम आपके लिए इसीलिए लेकर आते हैं ताकि आपको नई नई चीजों से अवगत कराया जाए और नया कार्य आप किस तरह से कर सकते हैं अपने या फिर जीवन शैली कह लीजिए उसको या फिर खेती बाड़ी कह लीजिए उसमें आप किस तरह से एक नया बदलाव कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं।
1: बिल्कुल वर्षा, और हम कोशिश करते हैं कि हम उन सारी जानकारियों को आपको उपलब्ध कराएं जो आपके लिए बेहद जरूरी हो, क्योंकि इस बुंदेलखंड क्षेत्र में यदि हम ये तो आपने कहा ऑर्गेनिक पद्धति से खेती कर व्यवसाय कर सकते हैं, दूसरी अगर तरफ देखा जाए तो यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से उनके चले हुए कार्य से हम यदि अपने काम को करें या अपने व्यवसाय को करें तो जरूर उन्नति होगी, जरूर उस कार्य में हमें जरूर अच्छा मुनाफा होगा यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से करेंगे तो हम।
0: हाँ जी जी बिल्कुल मनीष जी, हम यही कहने वाले थे कि अब हम बात को अपनी यहीं पर थोड़ा सा विराम देते हैं क्योंकि बहुत बातचीत हो गई हो और अब हमारे साथी जो हैं वो सोच रहे होंगे कि कब हमें इस प्रोग्राम के बारे में सुनाया जाए और आज आप किससे मिलवाने वाले हैं इस विषय में भी बता दीजिए।
1: तो हम चलते वहां पर हम पहुंचे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में जहां पर शोध होता है, जहां पर पढ़ाया जाता है, किताबों में बताया जाता है कि किस तरीके से हम सब्जियों का व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो जलवायु परिवर्तन को जलवायु को देखते हुए हम कर सकते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो मिट्टी के भी फर्क पड़ता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है, वो किस प्रकार की मिट्टी में हम कौन सी सब्जी उगा सकते हैं। तो यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से हम व्यवसाय को करें, सब्जियों का व्यवसाय करें, तो हमें जरूर मुनाफा होगा, फायदा होगा। तो हम आपको सीधा हरपाल सिंह जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पदस्थ हैं प्रोफेसर के पद पर, तो उनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में लोग सब्जियों का व्यवसाय कर अपनी आजीविका को बढ़ा सकता है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं।

0: सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सर मेरा नाम हरपाल सिंह है, मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में लेक्चरर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में, और मैं पिछले 5 वर्षों से यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैं किसानों की आय बढ़ाने के लिए सबसे आपको ये सबसे पहले ये सुझाव देना चाहता हूँ कि हम लोग बुंदेलखंड के किसान काफी जो है युवा हैं और काफी नॉलेज है मतलब यहाँ के किसानों को, क्योंकि मैं भी यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन जो बरवा सागर में है, मैं यहाँ पे गया हूँ कई बार किसानों को संबोधित करने, किसान मतलब ये सब उसमें। तो मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि किचन गार्डन भी आप कर सकते हैं। किचन गार्डन में क्या होता है कि आप जो है अपने घर के आसपास जो जगह खाली पड़ी रहती है उसमें हम लोग जो है एक घरेलू स्तर पे सब्जी उगा सकते हैं, जिससे हमें जो है एक तरीके से हमें फ्रेश सब्जी खाने को मिलती है और बिना केमिकल के हम जो सब्जी उगा लेते हैं। दूसरा ये कि हमें उसमें अलग से कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और अलग से कोई पानी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, घर से निकलने वाला जो पानी होता है वही इसमें इस्तेमाल हो जाता है जो किचन से पानी निकलता है जी। और जो है शुद्ध शुद्ध सब्जियां हम जो है उसे उगा सकते हैं जी। और दूसरा इसके साथ ही साथ जो है हम क्योंकि बुंदेलखंड की धरती जो है काफी उर्वर है, उपजाऊ है, तो यहाँ पे हम सब्जियों की खेती जैसे बैंगन की खेती कर सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में कि हमने एक पोसा ड्रम हेड एक वैरायटी है पत्ता गोभी की, उसी पे हमारा रिसर्च चल रहा है तो उस पे हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा। तो हमने जो है केमिकल खेती की बजाय हमने ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे करने की कोशिश की है और हमारा रिजल्ट काफी अच्छा रहा है यहाँ पे जो है, क्योंकि किसान का संबंध पशुओं से होता है
0: जी।
1: तो पशुओं का गोबर मूत्र वगैरह सब जो है मिलकर खाद बनता है, खाद से उस खाद को अगर हम सीधा सीधा खेत में ले जाएं और उसमें खाद में को मिट्टी मिला दें तो हमारी जमीन उपजाऊ भी होगी और दूसरा जो उत्पादन होगा वो भी बहुत उम्दा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे जो है सब्जियों की खेती करके जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे बैंगन है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है और प्याज है और लहसुन है, इन सब की खेती करके हम लोग ये मतलब जल्दी लाभ ले सकते हैं
0: जी।
1: क्योंकि जब हम वैसी खेती करते हैं जैसे गेहूं बाजरा अनाज जो खेती करते हैं इसमें बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन सब्जियों में क्या है समय कम लगता है
0: जी।
1: कम मेहनत की आवश्यकता पड़ती है और जल्दी ही उत्पादन शुरू हो जाता है
0: जी।
1: तो हम इसको बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं अगर हम बड़े किसान हैं, अगर हम छोटे किसान हैं तो हम छोटे छोटे स्तर पर टुकड़ों में जब खेत को बांट के और विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगा सकते हैं। और मैं तो यही सलाह देता हूं कि ऑर्गेनिक खेती पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती हमारे लिए हानिकारक नहीं है, हमारी भूमि के लिए भी हानिकारक नहीं है
0: जी।
1: तो हम लोग को जो है केमिकल खेती छोड़ देनी चाहिए, मतलब मेरा सुझाव है कि केमिकल खेती छोड़ के हम लोग पुराने अपनी पुरानी व्यवस्था पे जाएं, जो जैसे पुराने समय में हम लोग जो है ऑर्गेनिक खेती करते रहे हैं, हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आज हम फिर हमारा देश हमारा प्रदेश जो है उसी तरफ वापस लौट रहा है कि हम ऑर्गेनिक खेती मतलब जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है। और मेरी तरफ से ये सुझाव है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा सब्जी उगा के और जो भी विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी आपको सुझाव चाहिए कुछ आपको जानकारी चाहिए तो हम उपलब्ध हैं यहाँ पे
0: जी।
1: और हम अपने बुंदेलखंड के सभी किसानों के लिए जो है पूरा कोशिश करेंगे कि जो भी हमसे मेहनत हो सकेगी हम जो भी जानकारी दे सकते हैं बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकते हैं हम उपलब्ध रहेंगे।
0: हम सर एक चीज जानना चाहेंगे, चूंकि बुंदेलखंड में हम देखते हैं कि हमारे बहुत से युवा साथी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, किसानी से खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन समस्या बहुत ज्यादा ये आती है कि वो चाहते हैं कि खेती को किस तरीके से व्यवसायिक तरीके से जोड़ा जा सकता है। क्योंकि आपने सब्जियों का सुझाव दिया है तो हम जानना चाहेंगे कि इस बुंदेलखंड में ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिससे कम लागत लगती है और मुनाफा बहुत अधिक रहता है
1: जी। सर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फूल गोभी और पत्ता गोभी बैंगन ये सबसे यहाँ अच्छे होने वाली सब्जियां हैं, क्योंकि मैं मार्केट में भी देखता हूँ, मतलब जो है मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बैंगन का उत्पादन बहुत अच्छे से हो जाता है, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा एडवर्स है, विपरीत कंडीशन है, तो उसको ज्यादा केयरिंग की आवश्यकता नहीं होती बैंगन की सब्जी जो होती है। और अपना जो फूल गोभी है, पत्ता गोभी है और जो है मिर्च है, पालक है,

0: आपका धनिया है, हरा धनिया
1: जी
0: और तमाम ऐसी सब्जियां हैं जिनको उगाकर हम जो है मतलब जो जीवन यापन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि ये समय इनमें कम लगता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि इसमें समय बहुत कम लगता है और समय कम लगने की वजह से हमें, भाई देखो हमारा किसान जो है इतना भी सक्षम नहीं है कि भाई जो है उसे उसने धान लगाया 6 महीने बाद आया धान, हालांकि यहाँ नहीं होता है फिर भी जैसे गेहूं है टाइम टेकिंग है, गन्ना है बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो इसीलिए सब्जी क्या होती है जल्दी जल्दी उत्पादन देती है, जल्दी जल्दी करने में इजी रहती है, ज्यादा प्रैक्टिस जो है नहीं करनी पड़ती, ज्यादा कल्चरल क्रियाएं जो है जो कृषण क्रियाएं होती है वो नहीं करनी पड़ती, निराई गुड़ाई और बस यही थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि शाकीय पौधे होते हैं सब्जियां और इनको समय समय पर पानी की उपलब्धता होती रहनी चाहिए, जब भी लगता है कि फ्लावरिंग हो रही है फ्रूटिंग हो रही है तो पानी देते रहना चाहिए। बाकी ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे अपना जो है जल्दी जल्दी पैसा कमा के अपने घर का जीवन यापन कर सकते हैं और जो हम बड़े किसान हैं हम उसको कमर्शलाइज करके मतलब जो व्यावसायिक तौर से भी हम उसको उगा के जो है लाभ कमा सकते हैं। दूसरी बात कि अगर हम छोटे स्तर के किसान हैं तो हम लोकल मार्केट के आधार पर सब्जियों का उत्पादन करना चाहिए जिससे कि हम लोग जो है जिनकी डिमांड कम है क्योंकि यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा मीडियम टाइप का है, यहाँ का जो गांव का किसान है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, तो लोकल मार्केट के हिसाब से हमें छोटी छोटी सब्जी उगानी चाहिए छोटे स्तर पे, इसको एक छोटा किसान भी उगा सकता है और छोटी सी मार्केटों में बिक भी जाता है। और जो हमारे बड़े किसान है वो लोग जो है मार्केट गार्डन कर सकते हैं, जो मार्केट के आधार पर खेती की जाती है उसको मार्केट गार्डन कहते हैं या ट्रक गार्डन कहते हैं, जो डिस्टेंट मार्केट के लिए एक बड़े भूभाग पे जो हम खेती करते हैं वो जो है वो दूर दूर दराज के क्षेत्रों के लिए होता है। जैसे हम यहाँ से दिल्ली मैं देखता हूँ कि चना बहुत जाता है दिल्ली हरा चना, तो चने खेती करके भी हम लोग जो है काफी लाभ कमा सकते हैं क्योंकि चना जो है कम पानी चाहने वाली सब्जी है, सब्जी मान लीजिए क्योंकि चने का साग बनता है।
1: बिल्कुल सर,
0: तो आप ये यहाँ से चना उगा के यहाँ से दूर मार्केट के लिए जो है यहाँ से सीधा सीधा सब्जी का उत्पादन करके उसको वहाँ भेज सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है।
1: यहाँ पर सर अगर मौसम की बात करें, चूंकि मौसम परिवर्तन होता रहता है तो हम ये देखते हैं कि काफी सब्जियां उगाने वाले भी परेशान हो जाते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से वो अपनी सब्जियों को एक वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन करके अपने आय को बढ़ा सकता है?
0: जी जी सर, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम कोई भी खेती करने जाएं उससे सबसे पहले हमें अपनी भूमि की जांच करा लेनी चाहिए, अपनी सोयल की टेस्टिंग करा लेना चाहिए, उसके आधार पर जब हमें पता चलता है कि हमारे भूमि में मृदा में तो कौन कौन सी कमी है, कौन से पोषक तत्व कमी है, उसको जांच करा के उसके बाद ही जो है हम जो है उसमें कोई भी अगर हम रासायनिक खाद मतलब उसमें दे रहे हैं तो वो भी उसकी मात्रा के आधार पर देना चाहिए, और अगर हम ऑर्गेनिक दे रहे हैं तो वो ज्यादा लाभदायक है और वो उससे क्या होगा कि वो एट द टाइम ऑफ सोइंग या एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फील्ड मतलब भूमि की तैयारी करने के समय ही हम उसमें जो खाद डालते हैं देसी खाद, और उसके बाद हमें जो है साइंटिफिक सीड लेना चाहिए, वैज्ञानिक बीज लेना चाहिए, मतलब किसी रजिस्टर्ड संस्था का बीज लेना चाहिए, कोई ऐसा बीज नहीं लेना चाहिए जो कहीं से भी ऐसे किसान से ले लिया और हमने उगा दिया, हमें हमेशा एक रजिस्टर्ड संस्था से जहाँ से वो जो बीज के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है फर्म्स, तो हमें वहां से बीज लेना चाहिए और उसको सही वैज्ञानिक तरीके से हमें जो है उसकी जुताई करके उसका जो भी प्लांटिंग सिस्टम हो जो भी इरिगेशन सिस्टम हो उसको फॉलो करना चाहिए। और मैं सलाह देता हूँ कि स्प्रिंकलर जो मेथड ऑफ इरिगेशन है उसको ज्यादा फॉलो करना चाहिए या फिर ड्रिप इरिगेशन जो है जो बूंदी सिंचाई होती है सब्जियों में उसको भी उत्पादन मतलब उसको लगा के उसको कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। दूसरी बात यह कि पानी की यहाँ कमी है तो हमें जो है जो बौछारी सिंचाई है या हमारी बूंदी सिंचाई है वो उसको ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ बुंदेलखंड में यहाँ पानी इस बार बहुत गिरा है लेकिन पहली बार 4 सालों में 5 सालों में बहुत कम पानी
1: जी जी,
0: तो ऐसे केस में सब्जी उगाना बहुत टिपिकल होता है हार्ड होता है
1: जी,
0: तो ऐसे केस में ऐसी सब्जियों को उगाना चाहिए जो कम पानी चाहने वाली
1: जी,
0: हो
1: जी, जी,
0: जैसे मैंने बताया कि जो बैंगन का पौधा है काफी हार्ड होता है
1: जी,
0: जो हार्ड पौधे होते हैं वो कम पानी चाहते हैं
1: जी,
0: लेकिन जो साखी है जो पालक है उसको ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए, तो हमें ऐसी सब्जियों को ज्यादा उगाना चाहिए जो हार्डी नेचर की हो, जो हार्ड हो, जो आसानी से पानी की कमी को झेल सकती हो, तो ऐसे करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं
1: जी। और चलते चलते सर हमारे युवा साथी जो आपको सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: सबसे मैं अपने सभी युवाओं से ये आग्रह करता हूँ या निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग जो है एग्रीकल्चर को बढ़ाइए, एग्रीकल्चर बढ़ाइए और एग्रीकल्चर को पढ़िए, क्योंकि एग्रीकल्चर का इतना स्कोप है आज के टाइम में, आने वाले भविष्य जो है वो एग्रीकल्चर का ही होगा, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे केमिकल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो जिन हम केमिकल की तरफ जा रहे हैं उन्हें नुकसान हो रहा है, और जैसे जैसे हम लोग और ऑर्गेनिक पाएंगे, किसानी करेंगे और एग्रीकल्चर को, खेती को जो हम एग्रीकल्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी से करेंगे, नई नई टेक्निक से करेंगे, तो उससे हमें ज्यादा लाभ होगा और हमारे सभी जो है जितने भी युवा हैं सब एग्रीकल्चर करके बहुत भविष्य बना सकते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि एग्रीकल्चर बीएससी से इतनी वैकेंसी आए इतनी बहुत सारी, तो बीएससी एग्रीकल्चर करें और उसको एग्रीकल्चर करने के बाद अपने घर पे भी इसको फॉलो करें और अपने कैरियर को बढ़ा सकते हैं।

0: बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर हरपाल सिंह जी को, जो कि आपको बता रहे थे कि किस तरह से हम वैज्ञानिक तरीके से एक खेती करके और साथ में सब्जियों का व्यवसाय करके एक कैसा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल, उन्होंने साथ में ये भी बताया कि किस तरीके से इस बुंदेलखंड क्षेत्र में किस किस प्रजाति की सब्जियां को उगाकर हम अपने व्यवसायिक तरीके से इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि इस बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर बात करें बैगन की, बात करें प्याज की, बात करें गोभी की, तो इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसे सब्जियां उगाकर, क्योंकि 2 और 3 महीने की ये सब्जियां रहती हैं, तो 2-3 महीने में हम अपने खेतों में छोटे छोटे खेत की क्यारी बनाकर उसको लगाकर यदि हम बाजार में पैकिंग कर उसको बेचा जाए तो बहुत अच्छा मुनाफा होगा और इससे ढेर सारी आपकी इनकम भी जनरेट होगी। तो हम ऐसे व्यवसायों को चिन्हित करें जिसमें लागत भी कम लगती है और मुनाफा बहुत अधिक होता है।
0: बिल्कुल, और साथ में डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात जो बताई है कि जब भी आप अपने खेतों में कोई भी फसल या कोई भी सब्जी लगाना चाहते हैं, उससे पहले मृदा परीक्षण आप जरूर करवा लें, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी मिट्टी में कौन से तत्वों की कमी है और कौन सी खाद आपको उसके लिए डालना सही होगा।
1: बिल्कुल, और दूसरी अगर बात करें ऑर्गेनिक पद्धति की, बात करें कि जैविक पद्धति से यदि आप खेती करते हैं और उसमें सब्जियां उगाते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि जो अभी हम केमिकल भरी खाद हम इस्तेमाल करते हैं और केमिकल भरी खादों की सब्जियां जो हम खाते हैं, तो उसमें हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो ऐसे में यदि हम ऑर्गेनिक पद्धति से, जैविक पद्धति से यदि हम खेती कर सब्जियां उगाएं, तो इसका भाव भी आपको अच्छा मिलेगा और इसमें पैदावार भी अच्छी होगी और इसमें मुनाफा भी बहुत अच्छा होगा यदि हम ऑर्गेनिक पद्धति से करें।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने मनीष जी, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कोई भी चीज हो, चाहे वो फलों की बात कर ले या सब्जियों की बात कर ले, तो जल्दी से जल्दी हमें कैसे मिल जाए, इसके लिए भी कई तरह के केमिकल्स वगैरह चलते हैं, इंजेक्शन जो लगा के सब्जियों में, एक ही रात में सब्जियां बड़ी हो जाती है, उनको सुबह अपन बाजार में बेच भी सकते हैं। तो ऐसी सब्जियों से कोशिश करें कि आप बचे, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती हैं। और अगर कोशिश कर सके आप तो घर में ही अपनी एक क्यारी बनाकर उससे भी आप सब्जियां, रोज की जरूरत वाली चीजें जैसे मिर्ची है, धनिया है, टमाटर है, इनको गमलों में लगाकर भी आप उगा सकते हैं। लेकिन अगर व्यवसाय तरीके से आप करना चाहते हैं तो फिर आप जरूर मिट्टी का परीक्षण करवाएं, इसके बाद ही आप अपने खेतों में कोई अच्छी सब्जी और सब्जियों के साथ में आप फूलों की भी खेती कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक तरफा आपको मान लीजिए सब्जी में कहीं ना कहीं छोटा बहुत घाटा अगर होता है, तो वो फूलों के माध्यम से आपका बराबर का लेवल आ जाएगा।
1: चलिए, अब हमारा बरसा समय होता है इस कार्यक्रम आजीविका से विदा लेने का, क्योंकि हमारी बातचीत भी बहुत हो चुकी है और हमारे साथियों को बहुत अच्छी बातचीत भी लगी होगी, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि छोटी सी छोटी बातें आप लोगों तक पहुंचे और उस बातों को आप अपने जीवन में उतार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लाभ लें। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप जब हमें फीडबैक देंगे कि आपके कार्यक्रम को सुनकर हमने इस कार्य को किया है और अपनी आय में वृद्धि की है।
0: बिल्कुल, आपने जो एक बात कही थी कि बहुत ही अच्छी बातें हमारे साथियों को लगी होंगी, तो ये पता हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो तभी पता चलेगा जब हमारे साथी हमें फोन के माध्यम से या फिर पत्र के माध्यम से अपनी राय और सुझाव इस कार्यक्रम के बारे में देंगे। क्योंकि साथियों, आप जब हमें राय और सुझाव देंगे तो हम उसके हिसाब से आपके लिए और बेहतर कार्यक्रम कैसे बना सकते हैं, इसके भी सुझाव आप हमें दे सकते हैं। तो जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए जिस पर आपको पत्र लिख के ये बताना है। इसके लिए हमारा पता होगा
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा।
0: साथियों, हमारा फोन नंबर भी है जिसके माध्यम से आप अपनी राय, सुझाव और कार्यक्रम का फीडबैक, और इसके अलावा भी आप अगर कुछ और बात करना चाहते हैं, जैसे कोई नए व्यवसाय के बारे में आप बताना चाहते हो, या फिर आजीविका कार्यक्रम से आप जुड़े रहने के बाद आपने क्या बदलाव किया है अपने जीवन में, अपने पर्यावरण में, अपनी आय में, अपने रोजगार में, कुछ भी अगर आपने बदलाव किया है तो आप फोन के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर होगा
1: 9425147126।
0: दोस्तों, अब दीजिए हमें इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत, हम जल्द ही आपके सामने फिर से आएंगे, यानी कि रेडियो पर फिर से आएंगे इसी कार्यक्रम में इसी तरह की नई नई जानकारियों के साथ। अब दीजिए हमें जाने की इजाजत।

0: श्रोताओं नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपके आरजे रेडियो दोस्त वर्षा,
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। और सुन रहे हैं आप कार्यक्रम
0: हम होंगे कामयाब।
1: और हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए तरह तरह के कार्यक्रम इसमें लेकर आते हैं, और खास तौर पर उन छोटी छोटी बातों पर हम बात करते हैं जो हमारे युवा साथियों के लिए बहुत जरूरी रहती है। चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करें, चाहे वो उनके आजीविका को लेकर बात करें, चाहे वो उनके वैकेंसियों को लेकर बात करें, यानी रोजगार सूचनाओं को लेकर बात करें, तो हम तरह तरह के कार्यक्रम इस हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं।
0: और चाहे हम छोटा काम बड़ा मुनाफा की बात करें, ये तो आप भूल ही गए थे मनीष जी।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और हम अपने युवा साथियों के लिए ये सारे कार्यक्रम हम लेकर आते हैं। आज चूंकि हम मुझे कार्यक्रम आज सुनेंगे और इसमें जानेंगे, चूंकि हम और आप देख रहे हैं कि किसान साथियों की अगर बात करें, खेती किसानी का हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया जाता है, और ऐसे में हमारे किसान साथियों की किस तरीके से आय दुगनी हो, तो कैसे दुगनी हो सकती है जब तक हम किसी योजना का लाभ ना लें, या फिर हम लगे कुछ खेती किसानी में अलग करें, यानी आधुनिक पद्धति से किस तरीके से खेती करें। तो आधुनिक खेती अगर हमारे किसान साथी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएं चलाई जाती हैं शासन की ओर से, जिनका हम लाभ लेकर अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल साथियों, और क्योंकि जब कोई योजना चलाई जाती है तो वो हमारे किसान साथियों के लिए ही होती है, अगर कृषि से संबंधित है तो। लेकिन बस जरूरत ये होती है कि उस योजना के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, कैसे हमारे किसान साथी उस योजना का लाभ ले सकते हैं और कौन से वो किसान साथी हैं जो इस योजना के पात्र हैं।
1: और आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि सिंचाई का अब समय होगा, क्योंकि अब गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान साथी जो सब्जियां लगाए हैं या फिर अपनी खेती जो जायज की खेती रहती है वो भी अपनी लगाकर उन्होंने खेतों में लगा दी है, तो सबसे ज्यादा गर्मियों के मौसम में समस्या आती है कि पानी कहाँ से आए, कैसे पानी दे, वो तो पानी पर ही सब कुछ चलता रहता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री कृषि योजना का हमारे किसान साथी लाभ लेकर और अपनी खेती को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल साथियों, और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की हुई थी, और जिनके द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को अपने खेती की सिंचाई के लिए उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की गई थी,
1: और यह सब्सिडी किसानों को उन सभी योजनाओं के लिए भी प्रदान की जाएगी जिसमें पानी की बचत भी हो, कम मेहनत हो और साथ में खर्चे की भी सही तरह से बचत कर सके, ऐसे किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने की सुविधा हो। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई है। अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि योजना किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं, कितना पैसा रहता है इसमें, तो आपको इसके भी बारे में हम जानकारी दे देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अनाज के लिए कृषि सबसे ज्यादा जरूरी रहती है, और कृषि तभी बेहतर होगी जब सिंचाई के अच्छे साधन और संसाधन आपके पास उपलब्ध हो।
0: बिल्कुल साथियों, जैसे कि खेतों में सिंचाई के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, अगर फसलों को अच्छे से पानी नहीं मिलेगा तो वह किसानों के खेत खराब हो जाएंगे और जिससे उनकी फसल अच्छी नहीं होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत किसानों की इस समस्या को दूर किया जाएगा और किसानों को उनके खेतों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, सहकारी समिति, कॉपरेटिव जो कंपनियां रहती हैं उनके माध्यम से उत्पादक किसानों के समूह के सदस्यों और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है,
1: और यह राशि वर्ष 2026 तक इसका विस्तार इसका किया जाएगा, और साथ साथ में 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 वर्ष के विस्तार के लिए 2026 तक संचालित करने का इसमें निर्णय लिया गया था। और साथ साथ में आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप प्लांट लगाने पर 70% सब्सिडी की राशि बागवानी किसानों को प्रदान की जाएगी और साथ साथ में 50% सब्सिडी की राशि जो सीमांत किसान रहते हैं उनको प्रदान की जाएगी। और इस बात की जानकारी डिप्टी डायरेक्टर जो रहते हैं कृषि विभाग के, उन्होंने ये साझा की है। इसके अलावा फाउंटेन प्लांट की खरीद पर 60% की सब्सिडी छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान की जाएगी, साथ साथ में 50% की सब्सिडी अन्य किसानों को प्रदान की जाएगी। और इस योजना को लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ती है वो भी आपको साझा कर देना चाहते हैं कि इसमें जो जमाबंदी रहती है, ट्रेस माप रहती है यानी जो आपकी खसरा खतौनी की नकल रहती है, साथ साथ में प्लांट कोटेशन जो रहता है, आप किस चीज का प्लांट डालना चाहते हैं उसका कोटेशन भी आपको लगेगा, सॉयल वाटर टेस्ट रिपोर्ट जो रहती है वो कृषि विभाग द्वारा दी जाती है, साथ साथ में बिजली का बिल, आधार कार्ड आदि होना आपके पास अनिवार्य है। और इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा और यह 15 सितंबर 2021 से ये लागू किया गया था। और हर खेत को पानी योजना के लिए आर्थिक सहायता भी इसमें शामिल की गई है।

0: जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सिंचाई उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मुहैया कराना है, जिससे कि खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भी कारगर साबित होगी। इस योजना को देश के विभिन्न जिलों में होने वाली पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए आरंभ किया गया है, जिससे कि फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के अंतर्गत हर खेत को पानी योजना आरंभ की गई है। हर खेत को पानी योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी खेतों को पानी मुहैया कराया जाएगा, जिसके लिए कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस वित्तीय सहायता का उपयोग करके किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि उनके खेतों तक पानी पहुंच सके। अब इस योजना के माध्यम से खेती करने के लिए किसानों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
1: अब बात आती है कि प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत जो 1706 करोड़ रुपया अप्रूव किए गए हैं, उसके भी बारे में हम जिक्र करेंगे। साथ साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 का उद्देश्य क्या है, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ में प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इस पर भी, चूंकि खेती किसानी जुड़ी योजना है, इस पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की विशेषता, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक अच्छे से गीत को सुन लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष
0: और आपकी रेडियो दोस्त वर्षा के साथ में। सुनते रहिए कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में, मुझे हक है।

0: रेडियो अपनी बातें रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में मुझे हक है, जिसमें हम जान रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के बारे में।
1: और साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 1706 करोड़ जो रूपए अप्रूव किए गए हैं, उसकी सहायता के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस योजना के अंतर्गत खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा और मुख्यमंत्री अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग 22 दिसंबर 2020 को संचालित की गई थी और इस मीटिंग में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 1706 करोड़ रूपए आवंटित भी किए गए थे। मध्य प्रदेश का इसमें 682 करोड़ रूपए और 40,40,000 रुपए का शेयर भी है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया और सिंगरौली जिले शामिल भी हैं। अब हमारे श्रोता साथी सोच रहे होंगे, हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री कृषि योजना का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर फसल को उचित मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो वो खराब हो जाएगी और हमारे देश के किसान किस पर निर्भर रहते हैं, वो भी पानी पर निर्भर रहते हैं, सिंचाई पर निर्भर रहते हैं। तो ये कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से ज्यादा बल जल संसाधनों को अधिकतम उपयोग है ताकि बाढ़ और सूखे के आवेग से होने वाले नुकसान की रोकथाम ये कर सके, साथ साथ में उपलब्ध संसाधनों को कुशल उपयोग हो सकेगा और साथ में किसानों की हमारी पैदावार भी बढ़ सकेगी। प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इसमें मुद्रा प्रति बूंद योजना 5 वर्षों के में देश की खेती वाले क्षेत्र के विस्तार करेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश में हर जगह पानी मुहैया कराएगी और देश के फसल राशन को बढ़ावा देगी। यह देश के किसानों के जीवन स्तर में सुधार करेगी और इस प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रति फसल योजना के तहत अधिक फसल जल प्रबंधन प्रणाली का प्रबंधन भी करेगी। अब विशेषताएं क्या क्या हैं वो भी आप जान लीजिएगा।
0: श्रोताओं, सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एवं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सभी खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस योजना के अंतर्गत पानी के सोर्स जैसे कि जल संचयन, भूजल विकास आदि का निर्माण करवाएगी। इसी के साथ यदि किसान द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदे जाते हैं तो उनको सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि का भी बड़ा महत्व है इसमें और उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। यदि फसलों की सही प्रकार की सिंचाई प्राप्त होगी तो पैदावार भी बढ़ोतरी होगी। इस योजना का लाभ वह सभी किसान उठा सकते हैं जिनके पास खुद की जमीन और उस जमीन पर वो खेती करते हो, जल का स्रोत हो। इसके अलावा वह किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या सरकारी सदस्य हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ प्रदान कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदने पर इस योजना के अंतर्गत 80% से 90% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
1: अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि इसमें और क्या जानकारी हम उपलब्ध करा सकते हैं, तो बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो कंपोनेंट है वो है कन्वर्जेशन विद नरेगा, यानी कन्वर्जेशन जो रहता है नरेगा का, उसके माध्यम से आपको पैसा मिल सकता है। वाटर सेट परियोजना के माध्यम से मिल सकता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अदर इन्वेस्टमेंट पर भी पैसा हम निकाल सकते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन, हर खेत के पानी खेत में, इस पर भी हमारे इस योजना को रखा गया है। पात्रता क्या होनी चाहिए, इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और इस योजना के पात्र लाभार्थी देश के सभी वर्ग के किसान होंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होंगे, ट्रस्ट भी होगा, सहकारी समितियां होंगी और जो कोऑपरेटिव कंपनियां जो रहती हैं उनके उत्पादक कृषकों के समूह यानी एफपीओ के सदस्य भी इसमें रहेंगे और अन्य पात्र जो पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्य भी इसका लाभ ले सकते हैं। अब दस्तावेज क्या क्या लगना चाहिए इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के दस्तावेज जो हैं वो इस प्रकार से हैं। आपको जरूरत पड़ेगी आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, किसानों की जमीन के कागजात, जमीन की जमाबंदी, खेत के नकल, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।
1: और हमारे साथी सोच रहे होंगे कैसे आवेदन करें, तो योजना की जो जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के लिए आधिकारिक पोर्टल स्थापित किया गया है। यहाँ पर योजना से संबंधित हर जानकारी विस्तार पूर्वक तरीके से बताई गई है। पंजीकृत या आवेदन के लिए राज्य सरकार अपने अपने प्रदेश के कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन ले सकती है। अगर आप योजना के आवेदन के लिए इच्छुक हैं तो अपने प्रदेश के कृषि विभाग के वेबसाइट पर जाकर आवेदन संबंधित जानकारी ले सकते हैं और प्रतिक्रिया जो इसमें रिपोर्ट देखने की प्रतिक्रिया जो रहती है वो भी आप ध्यान से सुनिएगा।
0: बिल्कुल साथियों, MIS रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। इसके पश्चात आपको MIS रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुलकर आएंगे, जैसे अचीवमेंट रिपोर्ट, कंसोलिडेट एक्टिविटी बाइफ OTF, वन टच फॉर्मेट, DIP डॉक्यूमेंट अपलोडेड, पर ड्रॉप, मोर क्रॉप, डैशबोर्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PDMC, MI, वर्कफ्लो सिस्टम, ड्रिप डाउन प्रोग्रेस रिपोर्ट। आपको अपनी आवश्यकता अनुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी। अब आपको व्यू के विकल्प पर क्लिक करना होगा। संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी।
1: तो ये सारे दस्तावेज हमने बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। अब आपको क्या करना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अगर आपको नहीं लगता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी जो रहते हैं उनके पास जाकर पूछना होगा और ऑनलाइन इसके आवेदन जमा करने होंगे। तो ये जानकारी आपने जो हमने कार्यक्रम के माध्यम से बताई है तो हमारे किसान साथी इसका लाभ ले सकते हैं। और साथियों, अब हमारा वक्त भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। तो इस पर यदि आपको कोई विचार देना है या टिप्पणी करना है या फिर आपको फीडबैक देना है तो दे सकते हैं हमारे इस नंबर पर।
0: हमारा नंबर है 9425147726।
1: तो आपके रेडियो साथी मनीष
0: और आपकी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। हमारी और आपकी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

साथियों नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनैबे बारे हमारे सब साथियों को, सब हमारी प्यारी प्यारी सी बहनन को बरसा बहन की दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंचावे। साथियों देखो, आप तो जानते ही होगे कि ई वक्त और आज के दिन खास तौर से हम आप सबके लाने लेके आउथेंगे कार्यक्रम अम्मा के चौके से। जी हाँ सखियो, और अम्मा के चौके में अपन और बढ़िया बढ़िया सी रेसिपी बनावे की विधि को सीखेंगे। देखो खाना बनावो तो बहुत सरल बात हैगी और हमारी सब बहनें अच्छी तरह से जानती हैं, लेकिन खाना बनावे के संगे कौन कौन सी बातन को ध्यान रखें जज्जी अपन को, या फिर मान लो अपन को कोनो नई चीज सीखने हैगी तो कैसे सीखें, तो भैया रेडियो बुंदेलखंड एक बढ़िया माध्यम है वो अपनो, और ई में जो हम आपको विधि बताऊ

हैं या जो उन सखियन से बातचीत कर देंगे, सो उनकी बातें सुन के और आप अपने खाना पे जो है और स्वादिष्ट चार चांद लगा सकती होंगी, है ना? आपको देखो खाना पे भी चार चांद लगा लगे। तो सखियों देखो, आज हम आपके लाने हैं कार्यक्रम अम्मा के चौके में लेके आए हैंगे सोयाबीन चीली बनावे की आसान सी विधि। अब आप सब जने सोच रहे हो जो कि जो सोयाबीन की बरी खाई थी और सोयाबीन आलूवन में बना के खाओ, तो जो सोयाबीन चीली बनावे की विधि कैसे हुज्जे? बिल्कुल, आपके मन में जो सवाल खटक रहा है वो हम आपको उको समाधान भी बता रहे हैं, कहे कि इकी पूरी विधि और काका सामग्री में लगने हैं वह हम आपको जरूर बता रहे हैं। तो बने रहो हमारे संगे और सुनो जो कार्यक्रम। सो आओ अपन सीखत हैंगे सोयाबीन चीली कैसे बनाऊ थेंगे, इके बारे में कछु खास बात रखो।

0: चिकन चिली एक ऐसी डिश हैगी साथियों जो सभी जने पसंद करे थेगी, सबको पसंद जा आ जाऊ थेगी। काहे कि स्पाइसी खावे वाले लोग इसको ज्यादा पसंद करे थे, यानी कि जो तेज तर्राट खावो यानी ज्यादा मिर्ची वालों खाना खाऊ थेगे उनको भी जो ज्यादा पसंद आऊ थे। सोयाबीन चिली पौष्टिक चीजन से भरपूर हो थेगी, काहे कि इसमें हम बहुत सी सब्जियन को भी इस्तेमाल करे थेगे। देखो साथियों, जब अपन नॉर्मल सी सोयाबीन की बनी बनाऊ थेंगे तो अपन क्या करते हैं कि या तो गला के सिर्फ सोयाबीन अकेले बना ले उठे, या फिर एक नौ तरीका और है कि अपन और जो है चावलन में बना ले उठेंगे हैं, या फिर एक और जो है कि आलूअन में मिला के बना लेते हैं। लेकिन जो अपन सोयाबीन चिली बनावे वाए हैं इमें क्या करने अपन को कि बहुत सारी सब्जियन को भी मिक्स करने, सो जी में कहूँ कि पौष्टिक चीजें अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाएंगी। तो इमें आप सबको बता देवे के रोटी चावल या फिर आप ही खो ऐसे भी खा सकते हैं, यानी कि बिना रोटी चावल के भी आप खा सकते हैं खूब मजे लेके। सोयाबीन चिली खो आप 15 से 20 मिनट में भी बना सकते हैं, और आप चाहो तो ये खो रसादार भी बना सकते हैं, मतलब ज्यादा रसा नहीं, गाढ़ी गाढ़ी सी एकदम सी बना सकते हैं, या फिर सूखी आप बनावो चाहो तो सूखी भी खो बना सकते हैं। तो चलो साथी, आप बहुत देर से आप सुन रहे हैं कि सोयाबीन चिली बन रही सोयाबीन चिली, लेकिन कैसा बनाना जो तो अपन को सीख नहीं आया ना, तो चलो अपन देख देंगे कि सोयाबीन चिली बनत कैसी हैगी और ये क्यों बनावे के लाना है। सबसे पहले जो सवाल अपने मन में आउट है वो जो ही है वो के सोयाबीन की सामग्री का हो जे, यानी सोयाबीन चिली बनावे के लाना है सामान अपन और अनखो का चाने उके बारे में एक नजर एक लिस्ट अपन और बना ले उठे, ठीक है। तो बहनों लिस्ट बनावे के लाने आप का करो, एक कापी और पेन उठा लो जल्दी से। का होती के कबू कबू अपन और अब पहले आप पेन उठा लो फिर हम बाद में बताएंगे, ठीक है। सो का होते हम का कह रहे थे कि अपन और का करते कि चीजन को ध्यान तो रख लेते ही, लेकिन जब बना भी खिलाने बैठत ना सो चीजें आधी से ज्यादा दिमाग से बाहर निकल जाती। काय कि अपने दिमाग में और बिलास सारी जिम्मेदारी रहती, बहुत चीजें इताएंगी उताएंगी, सब सोचने आता अपन को है कि नहीं। सो इसे कोनो चीज अपन भूल ना जावे, सो पेन कापी अपन उठा के और उमे नोट कर लेवे, ठीक है। तो अब उठा लिया अपने पेन कापी, चलो तो अपन शुरुआत कर रहे थे सामग्री का अपन को चाने हैगी। तो सामग्री में सबसे पहले देखो सोयाबीन की बरी अपन को लेने हैंगी 500 ग्राम, प्याज अपन को एक ले लेने हैं, हरी मिर्च में चार ले लेवे, और शिमला मिर्च अच्छी खासी आउट हैगी सो एक से दो फीस शिमला मिर्च की ले लेवे। हरी प्याज अगर मिल जावे आपको तो एक से दो जो है हरी प्याज आप ले सकते हैंगी। गाजर में अगर आपको मिल जावे तो गाजर भी आप एक ले सकते हैं। तेल की अगर बात करें तो देखो साथियों, आप जाना थोगे कि तेल जो है वो अपने अनुसार डालना चाहिए, क्या कि कछु जने ज्यादा खाऊ थे और कछु जने कम खाऊ थेंगे। सो अपन को ध्यान रखने है वो कि तेल अपने हिसाब से यानी 100 ग्राम आप ले लेवे। जीरा ई में जरूर डाल लेवे एक चम्मच, लहसुन अदरक को पेस्ट भी अपन को दो चम्मच ई में ले लेने हैं, यानी कि लहसुन और अदरक को दो इंजन को मिला के पेस्ट बना के दो चम्मच हो जावे अपन को लेने हैं, ठीक है। काली मिर्च भी अपन को लेने हैगी एक से दो चम्मच, और मक्का को आटा आपने सबके घर में मिल जाऊ थे वो, मतलब बहुत कम मिला थे वो अब तो, पहले बहुत जल्दी मिल जाऊ तो मक्का को आटा ही में केवल अपन को दो चम्मच चाने हैं। नमक जो है वो स्वाद अनुसार चाने हैं। देखो अब कहे कि नमक की अगर बात हम आपको बता दें तो बात गलत हो जाएगी, आप एक चम्मच डाल लो या दो चम्मच, और ज्यादा हो जाए या कम रह जाए सो आप हमें खो उल्टी बातें सुनाओ है। सो इसे नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिए। अब आगे एक और चीजन कछु चीजन के हम नाम बता रहे हैं जो आपको मिल जावे तो ठीक है, और नहीं मिलवे तो आप बिना ई के भी बना सकते हैं, जैसे कि सोया सॉस दो चम्मच चाने हैं, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ई के बिना भी बन जाए। मिर्ची सॉस जो तो मिल जाए आसानी से सीखो तीन चम्मच डाल लीजियो। अब विनेगर चाने हैं अपन को सो दो चम्मच जो चाने और नहीं मिले तो ई के बिना भी चल जाए। धनिया पत्ता तो देखो मिल जाए और ई के बिना ना चले लेकिन, ठीक है। सो धनिया पत्ता ले लो। अब जा तो हो गई सामग्री के अपन को सामग्री का चाने हती, अब अपन बात कर लेवे कि अपन को विधि यानी के बनाने कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काम ही में जो करने हैं, अब काहे के बिला देर हो गई बातें करत कर, सो हम मन कर रहा हूँ कहना है देख छोटो सो कछु सुन लेवे अपन, और फिर सुनने के बाद फिर अपन विधि जान लेंगे, ठीक है। तो अपन एक बढ़िया सो लोकगीत को सुनत हैंगे, और लोकगीत सुनने के बाद फिर से कार्यक्रम में लौट के आ रहे कार्यक्रम अम्मा के चौके में। बने रहो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा के संगे, सुनत रहो कार्यक्रम अम्मा के चौके से।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
2: गुटका छोड़ो सैया रे हाँ हाँ, ए गुटका छोड़ो सैया रे हाँ हाँ, परों

0: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है। वृक्ष लगाइए, जीवन बचाओ।
1: अपनो रेडियो, अपनी बातें। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे साथियारो, देखो अभी आप सुन रहे थे ई नौने से लोकगीत को, जिखो गा रहे थे काशीराम और उनके साथी। अब अपन बात कर लेवे के अम्मा के चौके में जो विधि की अपन बात कर रहे थे कि विधि कैसी हैगी चिल्ली सोयाबीन बनावे की, सो अपन उखो देख लेते हैंगे। तो सबसे पहले अपन को का करने है वो कि पानी में थोड़ो सो नमक डाल लेवे और सोयाबीन की जो बरी अपन ने लई हैंगी उखो डाल के 2 मिनट तक उबाल लेवे, और उबलवे के बाद फिर उखो ठंडो होवे के लाने छोड़ देवे अपन। ऐसा नहीं है कि एकदम से जब उबल गई सो अपन एकाएक जल्दबाजी में जब रखेंगे सो गरम गरम उन्हें पानी में से निकाल लो, ऐसा नहीं करने। ठंडो होने देवे पहले, फिर उके बाद उन्हें पानी में से निकालवे। तब तक अपन का कर लेवे कि अब अपन प्याज, शिमला मिर्च, हरी प्याज और हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़न में काट लेवे, और इनको काटवे समय आपको ध्यान रखने हैं कि जो गाजर और शिमला मिर्च, प्याज जो भी आपने चीजें ली हैं इनको पहले धो लेवे अच्छी तरह से। का होती कि जल्दबाजी में अपन इन चीजन पे ध्यान तना कम दे पाऊ थेंगे, सो आप अच्छी तरह से इन्हें छील लेवे और धोने तो आपको जरूरी है। अब क्या करवे कि जब तक अपनी सोयाबीन जो है बा अच्छी तरह से ठंडी हो गई हुच्चे, तो सोयाबीन को पानी निकाल लेवे यानी को उखो निचोड़ लेवे। आगे अपन बता चलवे कि इमें अभी में साथियों अपन को क्या करने है गो के अंडा, सोया सॉस, टोमेटो सॉस, काली मिर्च, अदरक लहसुन को पेस्ट और मक्का को आटा जो है और थोड़ो सो नमक डाल के इखो अच्छी तरह से मिला लेवे। एक बार फिर से सुन लेवे, अंडा यानी अंडा हो फोड़ लेवे, सोया सॉस, टमाटो सॉस, काली मिर्च, अदरक लहसुन को पेस्ट, मक्का को आटा और थोड़ो सो नमक डाल के इखो अच्छी तरीका से मिला लेवे। फिर इखो तेल में अच्छे से तेल में फ्राई कर लेवे, और सावधानी से करने हैं बहनों आपको फ्राई। काहे कि देखो फ्राई करते में भी कई सारी ऐसी अचूक अपन से हो जाऊ थेगी जो अपन को का कहते घटना भी लग जाऊ थेगी। जैसे जल्दबाजी में अगर अपन फ्राई कर रहे तो तेल जो है हाथन पे उचक जाऊ थे गो, जिससे अपन जल जाऊ थे। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने है गो, आपको ध्यान रखने हैं कि सावधानी से अपन को जो है इन्हें तलने है गो। फिर क्या करवे कि गैस पे एक करजा को चढ़ावे और उमे तेल और जीरा डाल लेवे, यानी कि अब अपन बनावे की बारी आ गई। सो करैया में तनक सो तेल डाल लेवे और फिर उमे जीरा डाल देवे। जीरा डालने के बाद अपन को क्या करने है गो कि प्याज और गाजर को डाल देवे, तनक देर तक उखो भूंजत रहे। भूंजबे के बाद जब प्याज भुन जावे तो उको कलर जो है सुनहरे कलर को हो जाए है गो, फिर उमें शिमला मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के तनक देर तक और भूंज लेवे। फिर इमें सोया सॉस, टमाटो सॉस और विनेगर डाल देवे।

या ऊपर से अपन डार के और सोयाबीन चिली को अच्छी तरीका से परोसें तो बड़ी स्वादिष्ट और खुशबू की देखो तो बढ़िया सी आउथेगी। अब साथियों जा तो अपन ने जानी के सोया चिली कैसी बनत है, इकी विधि अपन ने जानी, इखो काका चाने हाँ तो बना भी के लाने, वो सब जान लो है अपन ने। आगे कछु सुझाव भी इके लाने हैंगे, सो आप भी ध्यान से सुन लो। सोयाबीन को गर्म पानी में डार के फुला लेवे। अगर आप सोयाबीन में अंडा मिलाऊ थेंगे तो टटोलत टाइम सोयाबीन ज्यादा तेल नहीं सूखत है गो और टेस्ट भी इको अच्छो होते गो। सोयाबीन को छानत समय तेल गरम यानी के तलत समय तेल गरम होवो चाहिए और आँच धीमी हो जाइए। आप चाहे तो आप अपनी पसंद को भी सब्जी इमें डाल सकते हैंगे, यानी कि आपकी जो पसंद की सब्जी हैगी बा भी इमें डाल सकते हैंगे और इको और स्वादिष्ट आप बना सकते हैंगे। तो साथियों जा तो हती हमारी आज की रेसिपी और हमें पूरो पूरो विश्वास है गो कि आपको जा रेसिपी जरूर जरूर जरूर पसंद आई हुजे। और साथियों अगर आपको ई के बारे में कछु और पूछने हैं गो या फिर ऐसी ही आपको और भी रेसिपी हमसे पूछने हैंगी तो भी आप हमें जरूर फोन के माध्यम से बता सकते हैंगे और या फिर हमें चिट्ठी पत्री के माध्यम से भी बता सकते हैंगे। जी के लाने अपना पतो है गो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। जो अपनो पतो है गो जी पे अपने सब साथी भैया चिट्ठी पत्री के माध्यम से अपन को संदेश लिख सकते हैंगे। सुबह जरूर हमसे जुड़बे और अपनी बात को जरूर रखबे। साथियों आज के कार्यक्रम अम्मा के चौकी से अब हमारे जाबे को समय हो रहा है गो और चलत चलत हम आपको सुनवात हैंगे बढ़िया सी गजल को। अब अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को देव जाबे की अनुमति, हमारी और आपकी फिर हुई है मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लाने खुश रहें, मुस्कुरात रहें और सावधानी पूर्वक से खाना बनाए अपन। हमेशा ध्यान रखें कि किचन में जो है बाल बच्चन को संगे ना ले जावे, काहे कि किचन में ऐसी बहुत सी नुकीली चीजें होती जिनसे उन्हें नुकसान हो सकता है गो। तो अब हम चलते हैंगे और जल्दी आपसे फिर से मुलाकात हुई है। तब तक के लाने नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। जैसा कि मित्रों हमारे किसान साथियों आपको पता है कि खेत खलियान कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। साथ साथ में अभी आपको पता होगा कि मौसम में परिवर्तन हुआ है। कुछ दिन पहले बरसात भी हुई थी, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई थी, जिससे काफी हमारे किसान साथियों को नुकसान हुआ था। और समय समय पर हम विषय विशेषज्ञ के माध्यम से आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अभी हाल में आपको पता होगा कि सब्जियों की फसल में जो कीट व्याधियां का प्रकोप देखने को और सुनने को जो मिल रहा है, उससे बचाव किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये एक सवाल आया हुआ था हमारे किसान साथी का, जो कि उज्जैन पठा के हमारे विजय जी ने पूछा हुआ था। और विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सैंसी हाशमी जी हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: जी नमस्ते किसान भाइयों, आज हम जो है कटिवर्गीय फसलों में लगने वाले जो प्रमुख कवकजनक रोग है उन पर चर्चा करेंगे। तो उनके बारे में, उनकी पहचान और निवारण के बारे में किसानों को बताएंगे कि वो रोग हम कैसे पहचान सकते हैं और उनसे अपने फसलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कद्दू वर्गीय फसलों में जो प्रमुख रोग लगते हैं उनमें मृदु रोमिलासिता, चूर्णिलासिता तथा उकता या जिसे मिलानी रोग कहते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। तो पहले हम एक एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे और उस रोग के लक्षण यानी कि उस रोग को कैसे पहचाना जा सकता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले रोग मृदु रोमिलासिता की। तो यह रोग जो है भारत के उत्तरी भागों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है और जैसा कि अभी हमने मौसम को देखा ही है कि वर्षा ऋतु हो रही है और फिर धूप निकल रही है, तो इस तरह का जो मौसम होता है, इस तरह के मौसम में ही ये रोग जो है वो अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद ही इस रोग के द्वारा नुकसान ज्यादा पहुंचता है और रोग का संक्रमण जो होता है वो इसमें बुआई के एक माह बाद ही हो जाता है और इसके द्वारा जो नुकसान होता है उपज में, उपज जो होती है वो नगण्य हो जाती है और 30-70% तक इसमें नुकसान देखने को मिलता है। और मृदु रोमिलासिता का विशेष का प्रभाव वैसे तो कद्दू वर्गीय फसलों में सभी फसलों पर देखने को मिलता है, लेकिन विशेष प्रभाव जो होता है वो खरबूजा और खीरे पर देखने को मिलता है। तो इस रोग के कारण खरबूजे में जो होती है वो मिठास नहीं रह जाती है।
0: मैं एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में खास तौर पर अगर सब्जियों की अगर बात करें तो बहुत महंगाई पकड़ी हुई है सब्जियां, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों की इस मौसम में बहुत नुकसान हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी फसलों की तैयारी करें, कौन कौन सी फसलें मतलब सब्जियां वो अपने खेतों में लगाए और उनकी निगरानी किस तरीके से की जा सके?
1: तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब फसल लगाए किसान, तो फसल लगाने के पहले अपनी भूमि को तैयार कर ले। भूमि को तैयार करने का मतलब ये है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके रोग जनक जो होते हैं वो मृदा में ही पाए जाते हैं या फिर उन फसलों के बीजों में, जिन बीजों की बुआई की जाती है तो उन बीजों में पाए जाते हैं। तो यदि हम पहले से मृदा का ट्रीटमेंट कर लें और जो हमारे बीज हैं उनको उपचारित कर लें तो इन रोगों से बचा जा सकता है। जैसे गर्मियों में हम लोग गहरी जुताई करके खेतों को छोड़ दें तो उसमें मिट्टी में उपस्थित जितने भी रोगाणु होंगे वो समाप्त हो जाएंगे और जितने भी खरपतवार हैं या अवांछनीय पेड़ पौधे हैं उनको हटा दें, क्योंकि उन पर ही जो है रोगजनक यानी कि उन पर रहते हैं, तो अगर उनको हटा दिया जाए तो उनका जो है वो सोर्स खत्म हो जाएगा, सोर्स यानी स्रोत खत्म हो जाएगा रोग फैलने का। तो इस तरह से किसान भाई बिना लागत के ये छोटी छोटी क्रियाएं करके रोगों से जो है वो अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया आपने बताई है। एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि जिन किसान साथियों ने अपनी फसल, जो अगर कद्दू वर्गीय की बात करें तो कद्दू वर्गीय की फसल उन्होंने अपने खेतों में लगा दी है, तो कौन कौन से ऐसे मतलब रोग इस मौसम में देखने को और सुनने को मिल रहे हैं, और रोकथाम के लिए अगर बात करें तो क्या उनको उपाय करना चाहिए मैम?
1: वो मैं वही इसी शीर्षक पर आ रही हूँ। तो इसमें जो प्रमुख रोग हैं ये मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि इसमें प्रमुख रोग मैंने आपको तीन बताए हैं, मृदुरोमिलासिता, चूर्णिलासिता और उकता या ग्लानि रोग। तो ये आपको एक-एक करके मैं इसके लक्षण, इनसे होने वाले नुकसान और साथ ही साथ इनके जो निवारण है वो बताती चलती हूँ। तो सबसे पहला जो रोग है मृदुरोमिलासिता, जो कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिलता है, तो इसके अगर लक्षणों की बात करें हम, तो इसकी पत्तियों की ऊपरी सतह जो होती है उस पर छोटे छोटे हल्के हरे और पीले धब्बे बनते हैं, जो कि जल्दी ही भूरे रंग के हो जाते हैं और इनकी शिराओं तक ही सीमित रहते हैं। जो शिराएं होती हैं वहाँ शिराओं पर ये धब्बे नहीं पड़ते हैं, तो वहां से ये थोड़े से मुड़ जाते हैं, तो ये धब्बे जो है वहाँ जिस जगह शिरा पाई जाती है वहां पे कोणीय हो जाते हैं थोड़े से। और इन धब्बों के ठीक नीचे यदि हम देखते हैं तो कवक का जो है वो जाली नुमा बैगनी या नीले रंग का जो होती है वो वृद्धि दिखाई देती है, और संक्रमित पत्तियां जो होती हैं फिर जल्दी भूरी होकर सिकुड़ जाती हैं और उनका जो संरचना होती है वो विकृत हो जाती है, और विकृत होकर ये पत्तियां जो होती है पौधे से गिर जाती हैं। अगर संक्रमण उग रूप में होता है तो फल छोटे होते हैं, संख्या में कम बनते हैं तथा विरूपित हो जाते हैं, यानी कि उनकी संरचना जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, सर्वप्रथम तो खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए और आगे की बुआई करना चाहिए। खेत की बुआई करने से पहले खेत की अच्छी तरह से सफाई कर देना चाहिए, यानी कि कोई भी खरपतवार या अवांछनीय पौधे उसमें नहीं होना चाहिए। और अगर ये समस्या बार बार आ रही है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, तो हमें कम से कम 3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी कि कद्दू वगैरह फसलों को 3 वर्ष तक नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये तो हमारे जितने भी निवारण हो गए ये बिना किसी खर्च के हो गए, और अगर हम बात करें रसायनों के द्वारा, अब भाई रोग आ ही गया है और फसल खड़ी है तो फिर उसको जो है नियंत्रित करना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैनकोजेब 0.25% और इसे क्या करते हैं 2.25 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करते हैं। तो अगर रोग गंभीर अवस्था में, बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में हो, तो मेटालैक्सिन और मैनकोजेब इसका जो है इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, और इसका इसकी मात्रा जो होते हैं 2.5 ग्राम मेटालैक्सिन और मैनकोजेब को 1 लीटर पानी के साथ मिलाकर और इसका छिड़काव करने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है।
0: ये मैम, अगर शुरुआत की अगर बात करें मैम, तो
1: जी
0: शुरुआत में हम जब अपने पौधे की रोपण करते हैं या अपने सब्जियों को लगाते हैं, उस समय जब हम बीज उपचार की बात करते हैं, तो किस तरीके से हमारे किसान साथियों को, और खास तौर पर अगर महिलाओं की मैम बात करें, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि खेतों में कंधे से कंधे मिलाकर महिलाएं खेतों

0: में काम करती है, तो उनको सबसे ज्यादा ये सलाह बहुत जरूरी है कि किस तरीके से वो अपने खेतों में जब सब्जियां लगाए तो बीज उपचार किस तरीके से करना चाहिए।
1: बीज उपचार देखिए, आजकल सब मतलब हर जगह यही बात बार बार बोली जा रही है कि हम कम से कम रसायनों का उपयोग करें।
0: यस
1: तो उसके लिए सबसे अच्छा हमारे लिए एक विकल्प ये है कि हम ट्राइकोडर्मा जो है और जो आपके मेडिसिनल प्लांट हैं, इनसे बनने वाले जो इनके जूस हैं, इनको जूस को निकाल के और उससे बीज उपचारित करें, तो वो इफेक्टिव भी होते हैं, कम को उनकी लागत भी कम होती है और इसको इससे किसी भी रोग को रोका भी जा सकता है।
0: शुरुआत से ही हमें मतलब इसका ध्यान रखना
1: जी जी
0: चाहिए।
1: जी जी
0: और
1: जी
0: अगर मैम पानी की बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जियां रहती हैं जिनको अधिकतर पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी की अगर
1: जी
0: बात करें तो पानी की किल्लत अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बनी ही रहती है,
1: जी
0: तो ऐसे में क्या किया जाए,
1: जी
0: कैसे किया जाए, कौन सी सब्जियां इसमें लगाया जाए जिसमें कम पानी से उत्पादन उनका अच्छा हो।
1: जी
0: साथियों, इस सवाल का जवाब सुनने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हैं और मनोरंजन करते हैं एक अच्छे से गीत के साथ। इसके बाद इस सवाल का हम जवाब हमारी जो विषय विशेषज्ञ है मैडम, उनसे हम लेंगे। तो आइए सुनते हैं यहाँ पर इस प्यारे से गीत को।

0: जहां तक पानी की बात है तो देखिए, इसमें जो ये वाली सब्जियां हैं कद्दूवर्गीय फसलों में, आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो
1: जी भाई,
0: इनकी जगह हम अप्रिशिएट करें कि हम जो है वो लौकी, कद्दू, तुरई इस तरह की और करेला इस तरह की सब्जियों को लगाएं
1: बिल्कुल भाई,
0: इस क्षेत्र में।
1: जी मैम। और दूसरी अगर बात करें मैम, टमाटर अगर देखा जाए तो यहाँ पर टमाटर का उत्पादन ठीक ठाक होता था, लेकिन कुछ
0: जी
1: दिनों से हम ये देख रहे हैं कि टमाटर का उत्पादन अपने क्षेत्र में कम पैदावार होता है। तो क्या कारण हो रहा है कि ये सब्जियों में गिरावट देखने को मिल रही है?
0: जैसा कि हम लोगों ने, हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी का एक फार्म है तो
1: जी
0: वहां पे बच्चे टमाटर लगाते हैं, तो मैंने ये प्रायोगिक रूप से देखा है कि वहाँ शुरुआती, जब टमाटर शुरुआत में आता है, मतलब आरंभिक अवस्था होती है, तो उसमें एक रोग लगता है, वो है अगेती झुलसा रोग। और उसके बाद जब टमाटर जो है वो तैयार हो जाता है तो उसमें पछेती झुलसा रोग आ जाता है। तो ये दोनों रोग जो होते हैं वो टमाटर की क्वालिटी को तो खराब करते हैं, साथ ही साथ उनकी जो उपज है उसको भी कम कर देते हैं। तो इन दोनों रोगों पर अगर नियंत्रण करने की किसान कोशिश करे तो हमारे ख्याल से उपज को बढ़ाया जा सकता है।

0: है।
1: तो मतलब शुरुआत से ही हमें ध्यान में रखना
0: जी
1: चाहिए इन
0: जी
1: बातों
0: शुरुआत
1: को।
0: से, किसान को शुरुआत से अगर ध्यान देगा तो
1: जी
0: उसकी रोग को नियंत्रित करने में लागत भी कम लगेगी, और साथ ही साथ जब वो हर बार ये क्रियाएं करेगा तो उस रोग की तीव्रता को भी कम किया जा सकता है। और इसका एक बेस्ट ऑल्टरनेट ये है, मतलब विकल्प ये है
1: जी
0: कि किसान जो है रेजिस्टेंस वैरायटी लगाए, और रेजिस्टेंस वैरायटी लगाने के साथ साथ हमेशा हर सीजन में ना एक ही रेजिस्टेंस वैरायटी नहीं लगाए, वैरायटी को बदल बदल के लगाए। क्योंकि क्या होता है, जो रोगजनक होता है,
1: जी
0: जैसे आपने देखा होगा मनुष्यों में जो रोग होते हैं, तो जब वो रोग जो है लगातार आते रहते हैं तो वो प्रबल हो जाते हैं, तो
1: जी
0: डॉक्टर भी जो होता है वो दवा को जो है वो परिवर्तित कर देता है, चेंज कर
1: बिल्कुल
0: देता है। तो इसी तरह से अगर हम रेजिस्टेंस वैरायटी को बदल बदल के लगाएंगे तो जो रोग जनक है, जो उसकी रेजिस्टेंस को जो होता है वो तोड़ देता है, वो तोड़ नहीं पाता है, वो अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेता है ना। जब लगातार एक ही रोग जनक जो होता है उस भूमि में पाया जाता है, वही रोग जनक और वही रोग आ रहा है, तो और आप वही जो है वो रेजिस्टेंस वैरायटी लगा रहे हो, तो उसकी जो होती है रेजिस्टेंस को वो तोड़ देता है। तो इसलिए अगर आप उसको बदल बदल के लगाएंगे ना तो रोग जनक जो है वो प्रभावी नहीं रहेगा
1: मैम,
0: उतना।
1: इसका ये कारण मतलब हम तो उस चीज में मतलब जानते नहीं है, आप एक्सपर्ट
0: जी जी
1: हैं। जैसे कि हम लोग मिट्टी की अगर चर्चा करें कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: इसका प्रभाव क्या सब्जियों पर पड़ रहा है मैम?
0: जी बिल्कुल पड़ रहा है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि किसान जो है वो बिना सोचे समझे जो है वो रसायनों का प्रयोग कर रहा है। ये
1: जी
0: रसायन अगर किसी एक खेत में लगातार रसायन का उपयोग किया जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो छोड़ दीजिए, वो मिट्टी ही बंजर हो जाएगी। तो
1: बिल्कुल
0: इसलिए हम लोग बार बार अप्रिशिएट करते हैं किसानों को कि आप जो है वो रसायन का उपयोग ना करें, इसकी जगह इसके जो विकल्प हैं उनकी तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा,
1: जी।
0: जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी रहेगी। और जब खेत बैरन पड़े रहते हैं ना, यानी कि खाली पड़े रहते हैं, तो उस समय जो है अगर ढेंचा लगवा दिया जाए खेत
1: जी
0: में तो
1: जी
0: उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो उसको रिकवर करेगी मिट्टी।
1: मैम, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर
0: जी
1: अगर
0: जी
1: देखा जाए बुंदेलखंड क्षेत्र में बरुआ सागर की अगर बात किया जाए, तो यहाँ
0: जी जी
1: पर खरबूज और तरबूज की
0: जी
1: पैदावार बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन
0: जी
1: आज देखा जाए तो ये 90 मतलब 100 में से 10% ही बचा है कि खरबूज और तरबूज लोग उगाते हैं। तो क्या कारण हुआ कि विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है ये सब्जियां, मतलब ये?
0: आप ये बरुआ सागर का जो टेक्सचर है, मिट्टी का नमूना है, एक तो इसकी जांच करवानी पड़ेगी कि
1: जी
0: भाई मिट्टी में क्या उत्पादकता में फर्टिलिटी में कमी आई है।
1: जी
0: दूसरी चीज ये है वहां रोग, कुछ ऐसे रोग होंगे जो हर साल कोई रोग अगर कम मात्रा में आता है और किसान ध्यान नहीं देता है तो अगले साल उससे दुगनी मात्रा में आता है, फिर उसके अगले साल उससे ज्यादा मात्रा में आता है। तो हो सकता है वहां जो रोग आ रहा हो वो प्रबल हो गया हो, जो उसकी पैदावार को कम कर रहा है। और एक नो डाउट, अब हमारे यहाँ पानी की कमी तो है ही, क्योंकि खरबूज तरबूज ये वाली फसलों को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, और अगर पानी की कमी है तो फिर किसान उन फसलों को लगाना भी छोड़ देता है, कम कर देता है, लगाना छोड़ देता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं सबके।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लेकिन हम आपसे एक छोटा सा एक प्रश्न पूछना चाहते हैं,
0: जी
1: क्योंकि हमारे दिमाग में कल एक सवाल आया हुआ था। मतलब ये
0: जी
1: हम जब लाइव कार्यक्रम कर रहे थे तो उस समय एक हमारे श्रोता साथी ने एक सवाल पूछ लिया था, वो सवाल
0: जी
1: हमारे मन में कल से ही गूंज रहा था, तो हमने सोचा कि आपसे मतलब पूछा जाए वो सवाल को। सवाल ये था
0: जी
1: कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास
0: जी
1: तौर पर देखा जाए तो महिलाओं का पर इनका ज्यादा असर देखने को और सुनने को मिलता है। अगर मैम
0: जी
1: बाल विवाह की इसमें बात करें, तो जलवायु
0: जी
1: परिवर्तन और बाल विवाह, इसको अगर
0: जी
1: जोड़ा जाए, देखा जाए, क्योंकि एक
0: जी
1: दूसरे से ये मतलब जुड़े रहते हैं, आपका क्या मानना है कि क्या कारण है कि आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर पर
0: जी
1: महिलाओं की और खास तौर पर जो बाल विवाह देखने को और सुनने को
0: जी
1: मिलता है, उसके बारे में मैम आपका क्या ख्याल है मैम?
0: देखिए, जलवायु परिवर्तन की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हम लोग खुद हैं,
1: जी
0: स्वयं हैं,
1: जी
0: क्योंकि हम लोगों ने ना पर्यावरण को सुरक्षित करने के तो उपाय नहीं किए हैं, लेकिन उसको बिगाड़ने की

0: कसर कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हम हर वो काम करते हैं जिससे हमारा पर्यावरण जो होता है वो प्रदूषित होता है,
1: जी मैम,
0: तो इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। और जहां तक बाल विवाह और जलवायु परिवर्तन की बात है, तो उसमें ये जो है ना कि अब मैच्योरिटी लड़कियों में जल्दी हो जाती है, क्योंकि
1: जी मैम,
0: हम लोग जो है हमारा खान पान ऐसा है कि
1: जी मैम,
0: हमारे यहाँ जो है लड़कियों में मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है।
1: जी
0: दूसरे
1: मैम,
0: हमारे हम जिस परिवेश में रह रहे हैं या जहाँ माहौल जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ शिक्षा की कमी है, क्योंकि
1: जी मैम,
0: जहाँ शिक्षा की कमी है वहीं बाल विवाह होते हैं।
1: बिल्कुल मैम,
0: और जहाँ शिक्षित हैं लोग वो इस चीज को समझते हैं कि बाल विवाह जो है वो एक कुप्रथा है एक तरह से हमारे यहाँ,
1: जी मैम,
0: और इस कुप्रथा को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। तो
1: जी मैम,
0: लोग जो है वो अगर लोग शिक्षित हो जाए और हमारे पर्यावरण के प्रति सजग हो जाए
1: जी मैम,
0: तो पर्यावरण भी सुधर जाएगा
1: जी मैम,
0: और साथ ही साथ ये बाल विवाह भी जो है वो भी रुक
1: और
0: जाएंगे।
1: कहीं
0: तो
1: ना कहीं
0: इसका
1: मैम
0: जो है
1: हमने भी
0: इसका
1: मैम,
0: एक और
1: जी
0: जी
1: मैम,
0: विकल्प यही है कि शिक्षा,
1: जी बिल्कुल,
0: आप
1: आपने सही
0: शिक्षित
1: बात
0: हो
1: कही है
0: और
1: कि
0: दूसरों
1: शिक्षा
0: को
1: एक
0: शिक्षित
1: ऐसा विकल्प
0: करें।
1: है जिसको हमें समझना चाहिए और सोचना चाहिए। समस्या यहाँ पर
0: जब आप
1: मैम ये
0: शिक्षित
1: आती,
0: होंगे
1: जी
0: जी, अब आप जब आप शिक्षित होंगे तभी
1: जी
0: आप पर्यावरण को भी बहुत अच्छे से समझ
1: बिल्कुल
0: पाएंगे
1: मैम,
0: कि
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: पर्यावरण को हमें अपने कैसे बचाना है, क्या क्या
1: बिल्कुल,
0: हम काम करें, हम वाटर सेविंग करें
1: जी मैम,
0: और हम ऐसे जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो अपने दूर ले जाकर बस्सी से लगाएं और जंगलों को ना काटें,
1: जी मैम,
0: जंगलों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं, तो
1: जी मैम,
0: उसी इन सब चीजों से हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित हो सकता है।
1: कहीं ना कहीं मैम ये भी तो हो सकता है, मतलब ये चूंकि हम तो एक्सपर्ट है नहीं, आप उसको वाली बात ही
0: जी
1: जानती हैं, कहीं ना कहीं मैम जब हमने लोगों से बात की है तो उन्होंने ये बताया कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, मौसम चक्र बदला है, कहीं कहीं बर्बादी मतलब जाना किसानों की नुकसान हुआ है, जिस कारण से वो
0: जी
1: लोग क्या करते हैं, पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जब पलायन
0: जी
1: करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम बच्चियों को वहां पर कहाँ ले जाएंगे, तो वो मजबूर हो जाते हैं कहीं ना कहीं बाल विवाह करने के
0: जी
1: लिए। तो आपका क्या मानना है मैम इस विषय को लेकर?
0: जी ये बात तो सही है कि मुझे याद है ये 2005 to 2007 की बात है
1: जी मैम,
0: कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में ना 2005 से लेकर 7 तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी, तो किसान की पूरी खेती जो है वो बहुत ही कम हो गई थी या ना के बराबर हो गई थी। उस समय बहुत सारे किसानों ने मजदूरों ने जो है वो पलायन कर दिया था दिल्ली की तरफ,
1: जी मैम,
0: दिल्ली की तरफ या आसपास के जो बड़े क्षेत्र है वहां मजदूरी करने के लिए पलायन कर लिया था।
1: जी मैम,
0: तो अब उसमें समस्या ये उत्पन्न होती है कि दूसरे शहर में अगर पलायन करने जाता है बंदा तो वो कमाने के लिए जाता है। अब वो कमाने के लिए वहां जाएगा तो बड़े शहर का खर्चा भी ज्यादा होता है, तो वो सोचता है कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी जो लड़की या शादी करना है
1: जी
0: वो
1: मैम,
0: शादी करके और एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, फिर यहाँ का खर्चा भी खत्म हो जाएगा और हम काम वो जो कमाएंगे वो परिवार को भेजेंगे। तो
1: जी मैम, जी मैम,
0: लेकिन ये है कि अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर लेते हैं तो
1: जी मैम,
0: जलवायु में भी चेंज आएगा। आप देखिए जिस टाइम कोरोना था तो कोई व्हीकल नहीं चल रहे थे, कोई
1: जी मैम,
0: भी किसी तरह का आवागमन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो वाहनों की वजह से जो पर्यावरण हमारा संदूषित हो रहा था वो एकदम साफ हो गया था,
1: बिल्कुल मैम, जी मैम,
0: बिल्कुल साफ हो गया था। तो उस समय जो है वो मतलब हवा भी बहुत अच्छी लगती थी, हालांकि हवा कोई लेना नहीं चाह रहा था,
1: जी मैम,
0: लेकिन हवा जो है वो बहुत जो प्रदूषित थी वो भी साफ हो गई थी। दिल्ली में भी जितना प्रदूषण था वो भी सब खत्म हो गया था। तो यही एक रीजन है कि लोग जो है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो उन पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से वो पलायन कर जाते हैं, क्योंकि उनका
1: बिल्कुल
0: खेती वगैरह सब खत्म हो जाता है।
1: जी मैम, इसका मैम बस
0: तो
1: लास्ट इसका सवाल रहेगा हमारा कि इसका समाधान मैम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसका रोकने के लिए इसको?
0: इसको रोकने के लिए जैसे शहरी लोग हैं तो शहरी लोग अलग अलग वाहनों से सफर करते हैं, तो बड़े शहरों में तो आजकल ये चल ही रहा है कि आपने सुना होगा कार पूल करते हैं, तो लोग जैसे जिनको एक जगह जाना है वो एक ही वाहन से जाएं, दो चार लोग एक ही वाहन से जाएं, पानी को कम वेस्ट करें, जल संरक्षण करें
1: जी मैम,
0: और ऐसे उपाय अपनाएं जिससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, उसे हम बिल्डअप

0: ना कि उसे और बर्बाद करें।
1: मैम आपने समय दिया है इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपका, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि मैम आपने इतने कम समय में बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोता साथियों के जो मन में सवाल चल रहे थे उसका मैम आपने समाधान किया है। इसके लिए मैम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते।
0: जी धन्यवाद, उन्होंने
1: थैंक यू मैम।
0: मुझे सुना और उम्मीद है कि वो मेरी बातों को जो है वो अपनाएंगे भी, जिससे वो फायदा उठा सके अपना कर। जी धन्यवाद।
1: चलिए थैंक यू साथियों, इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने विचारों को रख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: con dei lì.
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और साथियों, हम लेके आ गए आप सब जानने के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक विधा को सुनते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों, आज भी अपन सुने एक बढ़िया सी विधा को और विधा को आनंद ले हैं। वह विधा है नौटंकी। जी हाँ दोस्तों, जब गाँव में क्या ब्याह शादी में नौटंकी आवे और नौटंकी की हवा ऐसी फैलत के हम का बताएं कि आज चलो फलानी की बारात में नौटंकी आ रही है। सो सब जने बिल्कुल नौटंकी देख के लाने बिल्कुल उताब ले रहे, तो बहुत ही तैयारी से कि आज चलो कानन के लाने स्वापी बांध लो, हाथ में मोजा पहन लो, मुंडा पहन लो, चलो अपन को नौटंकी देखने हैं आज। सो दोस्तों, नौटंकी जब अपन देखते तो कितनी सुहानी लगत, कितना रात भर मन लग रहा नौटंकी को देखने में। सो दोस्तों, आज यही क्रम में अपन सुनाए विधा नौटंकी को और नौटंकी को आनंद ले हैं। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो दोस्तों, आओ दिन न करत भाई सुनते हैं प्यारी सी नौटंकी को। जी ये गा रहे हैं बनमाली वर्मा जी और उनके संगी साथी। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे।

0: सारे ज्ञान के घाती बने हैं।
1: हाँ लाला, जितना ही भोजन बनवाया है लाला जी, सब में जहर मिलवाया है।
0: यानी हमारे भाई साहब ने?
1: हाँ।
0: तो सुनो भाभी, अगर मुझे भगवान की यही कृपा है तो मैं भोजन अवश्य करूंगा।
1: नहीं लाला, ऐसा नहीं आप करेंगे।
0: अरे रहे जिंदगी, अगर मेरी जिंदगी मिली तो माँ भगवान से मेरी यही प्रार्थना होगी कि मुझे तुम जैसी माँ मिले।

0: कहिए भाभी।
1: अगर आप ऐसा कहते हैं तो ठीक है, मैं परोस देती हूँ, लेकिन परोसने में मेरा दिल थर्रा रहा है लाला।

0: मत करिए।
1: सुनिए भाभी, आप कहती हो कि आप भोजन करोगे तो मैं तुम्हारे साथ में अपने प्राणों निछावर कर दूं, नहीं तो ऐसा नहीं है।
2: मेरे संग में मरेंगे तू भाभी अभी तो जगत में जचेगी ये सांसी सही। सारी दुनिया कहे फंसी देवर के संग बात भाई की।

0: करती है।
1: नहीं महाराज।
0: सुनो रानी, और गिरबाल संग ऐसी करती है, उन शरम के जी को नहीं। और बताती हूँ उसको ब्रह्मचारी, और खसम उसी को
1: झूठ है महाराज। किसकी बहकाने में आप आ गए, ऐसा न मत कहिए महाराज।
0: अच्छा चंपा सुनिए,
1: मैं
0: जा रहा हूँ और बाजार से एक शीशी लाकर देता हूँ और सारे भोजन में चाय मिला दूँ और हजलों को खिला देना।
1: नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं करिए महाराज, नहीं। एवानी जा, मेरे लाला हरदोल को बुला के ला।
2: जाती हूँ लाला जी। चलिए, तुम्हारी भाभी ने याद किया है।

0: लिए।
1: आप कहती हो कि छीक हुई है?
0: हाँ छीक तो जरूर हुई है।
1: तो सुनो वाणी,

0: ज्ञान के घाती बने हैं।
1: हाँ लाला, जितना ही भोजन बनवाया है लाला जी, सब में जहर मिलवाया है।
0: यानी हमारे भाई साहब ने?
1: हाँ।
0: तो सुनो भाभी, अगर मुझे भगवान की यही कृपा है तो मैं भोजन अवश्य करूंगा।
1: नहीं लाला, ऐसा नहीं आप करेंगे।
0: अरे रहे जिंदगी, अगर मेरी जिंदगी मिली तो माँ भगवान से मेरी यही प्रार्थना होगी कि मुझे तुम जैसी माँ मिले।

0: जी,
1: कहिए भाभी।
0: अगर आप ऐसा कहते हैं तो ठीक है, मैं परोस देती हूँ, लेकिन परोसने में मेरा दिल थर्रा रहा है लाला जी, आप तो भोजन मत करिए।
1: सुनिए भाभी, आप कहती हो कि आप भोजन करोगे तो मैं तुम्हारे साथ में अपने प्राणों निछावर कर दूं, नहीं तो ऐसा नहीं है।
2: मेरे संग में मरेंगे तुम भाभी, अभी तो जगत में जचेगी ये सांसी सही, सारी दुनिया कहे फंसी देवर के संग, बात भाई की।

हाँ देखो दोस्तों, जहाँ अपन सब जनन ने सुनी है नोटंकी, ई नोटंकी को आनंद लव है दोस्तों। ई नोटंकी को गा रहे थे बनमाली वर्मा जी और उनके संगी साथी। अब साथियों, एक क्रम में हम आप सब जन को बता देवे कि आज के ई कार्यक्रम विधा बुंदेली से आपके दोस्त माता दीन भैया जी को जाबे को समय हो गया है। सो अपने दोस्त माता दीन भैया को दो ई कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात ई कार्यक्रम में ई बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

करो भरोसा।

0: ये बात सत्य है, नारियां नारियां देवी का रूप होती है, ये बात सत्य है।
1: एक तरफ ये देवी है, दूजा मैं पुजारी हूँ।
0: अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी काय और काय ना।
1: एक तरफ ये देवी है, दूजा मैं पुजारी हूँ।
0: और

0: कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आजकल ऐसे होने लगो, बताए कैसे यारो मोहब्बत मत करना, यारो मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारो मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: जवाब सतली कहना है हमने इतना प्यार करो मालूम कितना।

0: नमस्कार।
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में, और आपके साथ हैं आपकी रेडियो दोस्त वर्षा
0: और मनीष। कार्यक्रम लेकर आए हैं, और साथ में आपको बता दें कि कार्यक्रम आजीविका में हम छोटे छोटे व्यवसायों को लेकर बातचीत करते हैं, और ऐसा हमारे श्रोता साथी सोचते हैं कि छोटे छोटे व्यवसाय तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन कहीं क्योंकि कृषि प्रधान देश है अपना और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा खेती होती है, तो ऐसे में हमारे बेरोजगार युवा साथी किस तरीके से रोजगार को बढ़ा सकते हैं खेती में।
1: बिल्कुल सही कहा है आपने मनीष जी, क्योंकि हमारे जब साथी किसानी तो करते ही हैं, लेकिन किसानी में किस तरह से वो एक व्यवसाय के तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से लघु उद्योग जिनको कहते हैं, वो अगर करके एक बहुत ही अच्छा बेहतर तरीका अपना सकते हैं। जो हमारी बहनें हैं जो हमेशा सोचती हैं कि हम फालतू रहते हैं घर में खेती का काम करके, या घर का काम करने के बाद भी हमारे पास बहुत सारा समय ऐसा बचता है जो हमारा बेकार का जाता है, तो ऐसे समय को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करके एक नया तरीका अपना सकते हैं व्यवसाय को देखते हुए, लघु उद्योग को देखते हुए, और किस तरह से हम अपनी आजीविका चला सकते हैं, आज के इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे।
0: उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हमारा किसान आज किसानी करते हुए बहुत वर्ष हो गए हैं, लेकिन वो मुनाफे का खेती नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, इसकी जानकारी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दी थी कि किस तरीके से वो मुनाफे की खेती कर सकता है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम नए नए आइडियाज खेती से हम दाल उगाते हैं, खेती से चना होते हैं, खेती से चावल होते हैं, बहुत सारे ऐसे खेती के प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे खेती के सामान होते हैं जिनको हम बाजार में बहुत अच्छी तरीके से बेचकर बहुत अच्छा

0: मुनाफा कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि हमारे जब किसान साथी फसल उगाते हैं तो वो सीधा ले जाकर उसको बेच देते हैं, लेकिन उसका जो पूरा मुनाफा होता है वो बीच के बिचौलिया ले जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस कार्यक्रम को आप बड़े ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में वो सारी जानकारी आपको बताई जा रही है कि किस तरह से खेती से आप सीधा मुनाफा जो बिचौलिया ले जाते हैं वो उनको ना जाके आपको सीधा ही मिल सकता है।
0: बिल्कुल, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे डॉक्टर संतोष पांडे जी जो कृषि विभाग में पदस्थ हैं, उनसे हमने जानने की कोशिश की और उनसे जाना भी है कि हमारे किसान साथी इस बुंदेलखंड क्षेत्र में इस खेती में किस तरीके से मुनाफे का सौदा कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपनी खुद के उगाए हुए फसलों को किस तरीके से व्यवसाय तरीके से बेच सकते हैं। क्योंकि खेती करने वाला किसान होता है वो सिर्फ अनाज को उगाता है, उगाने के बाद वो मंडी में सीधा ले जाता है, लेकिन यदि व्यावसायिक तरीके से देखा जाए तो व्यावसायिक तरीके से यदि खेती की जाए, उसने जैसे कोई भी खेती को उगाया उसने और घर पे रख के वो अब उसको पैकिंग करके अगर मार्केट में बेचेंगे तो बहुत ज्यादा मुनाफा होगा और बहुत ज्यादा, चूंकि हम जब खड़े चना ले जाते हैं या खड़ी दाल ले जाते हैं या खड़े चावल ले जाते हैं तो वो कम रेट में मिलते हैं, लेकिन यदि हम उसको बढ़िया पैकिंग करके बढ़िया दाल बनाकर उसकी पैकिंग बाजार में अपनी ही ब्रांड, क्योंकि इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता है, और अपनी ब्रांड से बेचकर इसको बाजार में बेचा जाए तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं हमारे किसान साथी, हमारे युवा साथी इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
1: तो सारी जानकारी आप यहीं बता देंगे या फिर हमारे साथियों को प्रोग्राम भी सुनने देंगे?
0: चलिए, हम अपने डॉक्टर संतोष पांडे से मुलाकात आपको करवा रहे हैं जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पदस्थ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी किस तरीके से व्यावसायिक तरीके से खेती को कर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर संतोष पांडे जी को।
2: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संतोष पांडे है, मैं सहायक प्राध्यापक के पद पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में नियुक्त हूँ। बुंदेलखंड के युवा जो हैं वो फर्स्ट क्लास जो है, यहाँ पर चूंकि दलहन उत्पादन बहुत होता है
0: जी,
2: इसके लिए उनको जो है दलहन में जैसे चना है, मटर है, मसूर है, इसको दालों के रूप में उद्योग को विकसित कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स में जैसे दाल तो है ही है, दाल के साथ साथ नमकीन है और सारी जो है चीजें, तमाम जो है इसके प्रोडक्ट जो है तैयार हो सकते हैं, इसको करके अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। दलहन आज के समय में मुख्य जो है आवश्यकता है और बुंदेलखंड रीजन
0: जी,
2: जो ये झांसी ललितपुर आपका जालौन ये एरिया है, ये खासकर मटर
0: जी,
2: चना
0: जी,
2: उर्द मूंग इसके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ यहाँ पर वर्तमान समय में जो आज का परिवेश है इसमें तिलहन के रूप में तिल की खेती करके तिल से बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जैसे तिल का लड्डू है
0: जी,
2: आज के समय में तिल की मिठाइयां हैं
0: जी,
2: तिल का तेल है
0: जी,
2: ये उद्योग जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में अगर युवा साथी अपनाएं और गांव में एक समूह बनाकर छोटे छोटे जो है ग्रुप्स में जो है अगर काम करना शुरू करें तो बहुत अच्छा इनकम जो है इससे जो है डेवलप किया जा सकता है। ये ग्रुप्स 10 का हो सकता है, अपने हम उम्र में हो सकता है, एक उम्र के वर्ग के साथी जो है साथ में जुटें, जो क्योंकि युवाओं में जोश होता है, चूंकि एक उम्र में एक जाति एक विशेष वर्ग में, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि क्या है विचार मिलने की बात है
0: जी, जी।
2: युवा तभी जो है उसमें मोटिवेट होगा जब हमारे विचार मिलेंगे।
0: बिल्कुल सर,
2: तो इसलिए उन विचार एक विचार वाले साथियों को मिलकर उस पर एक चर्चा करनी चाहिए
0: जी।
2: इसके साथ साथ दुग्ध पालन है
0: जी।
2: उसके बाद दलहन तिलहन तो है ही है
0: जी।
2: तमाम साधन कृषि में अनेक संभावनाएं हैं जिसमें रोजगार ही रोजगार है, सिर्फ और सिर्फ उसमें ध्यान देने की जरूरत है और संगठन के साथ कार्य करने की जरूरत है
0: जी। और दूसरी बात सर आती है कि यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात आती है, तो हमारे युवा साथी इसको किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या बुंदेलखंड में संभावना है सर?
2: इसे स्वरोजगार, जिसे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है
0: जी,
2: कि हमारे यहाँ स्वरोजगार, लोग नौकरी ना करके सर्व स्वावलंबन में आए
0: जी,
2: उस तहत में काम कर सकते हैं
0: जी।
2: उसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जैसे है कि हम जो बाई प्रोडक्ट्स हैं

0: सारी चीजें प्रोसेसिंग में ही आती है।
1: बिल्कुल सर।
0: तो उसका हम उपयोग गाँव में तमाम चीजें होती है
1: जी,
0: जैसे बेसन है
1: जी,
0: दलिया है
1: जी,
0: यहाँ बुंदेलखंड का कठिया गेहूं बहुत अच्छा है।
1: बिल्कुल सर।
0: तो किसान जो है के घर के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, बेरोजगार के लिए इधर उधर टहल रहे हैं रोजगार के लिए
1: जी,
0: छोटी छोटी मशीनें गवर्नमेंट से जो द्वारा जो है जो 10-12 हजार 15 हजार रुपए में छोटी छोटी मशीनें आती हैं उसको ले ले और स्वयं से पैकिंग करें, उसका अपना जो है सोसाइटी बना लें, FIG या PO का डेवलपमेंट करें, फार्मर FIG या फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, फार्मर ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप या FIO होता है
1: जी,
0: तो उसके आधार पर काम कर लें और जैसे जैसे काम बढ़ता जाए लोग उसमें जुड़ते जाए और ये एक बहुत बड़ा रोजगार जो है दे सकता है।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने सर बात करी। और चूंकि बुंदेलखंड में इस तरीके के हमारे युवा साथी सोचते हैं कि एग्रीकल्चर को व्यवसाय के रूप में नहीं देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जो उद्योग की अगर बात करें, फ्लाई एश मशीन लगाना या फिर पेवर्स ब्लॉकिंग करना, इस तरीके के व्यवसाय को वो व्यवसाय कहते हैं। लेकिन यदि एग्रीकल्चर को देखा जाए, कृषि को देखा जाए, उस तरीके को फायदे का मुनाफा का सौदा नहीं मानते हैं। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? सर
0: कृषि के क्षेत्र में विकास कार्य बुंदेलखंड में बहुत कम हुआ है, जो काम किया भी जा रहा है वो रूट लेवल पर नहीं है, जमीनी स्तर पर नहीं है
1: जी।
0: ये कार्य जमीनी स्तर पर होना चाहिए गाँव में लोगों को। इसके लिए गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि जमीनी स्तर पर प्रोग्राम चलाए जाएं जिसको कि गाँव में डोर टू डोर सिस्टम में कहा जा सकता है, युवा साथियों को स्वरोजगार के माध्यम से इन सब चीजों की जानकारी दी जाए
1: जी।
0: और जो चीजें हैं आज के युग में जितने भी हमारे जो भी बाहरी लोग नौकरी करने जाते हैं
1: जी,
0: उसमें चीजें हैं हमारे यहाँ महिलाएं, गांव की महिलाएं रोजगार की तलाश करती है लेकिन रोजगार उनको दिखता नहीं, जो कि रोजगार उनके घर में है।
1: घर में है, बिल्कुल।
0: अगर चावल की बिनाई कर ले,
1: बाई
0: बिनाई करके उसको पैकेटिंग कर ले
1: जी,
0: दाल जो है चना है चने की ग्रेडिंग कर ले
1: जी,
0: ग्रेडिंग करके पहली क्वालिटी का चना मार्केट में खड़ा चने के रूप में यूज करे, सेकेंड क्वालिटी का चना दाल के रूप में, थर्ड क्वालिटी का चना बेसन के रूप में, तो इस तरह बाई प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। बाई प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने के लिए जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं
1: जी,
0: उनको मार्केट में जो है आगे आना चाहिए। जो दलाल है, ब्रोकर्स हैं, जिससे किसानों की जो दयनीय स्थिति गड़बड़ हो रही है वो भी इम्प्रूवमेंट होगा, वो भी सुधार होगा। और एग्रीकल्चर से ज्यादा रोजगार किसी चीज में नहीं है आज के समय में, एग्रीकल्चर इज द बेस्ट, सबसे अच्छा है
1: जी, जी।
0: तो रोजगार के लिए हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जानकारी की जरूरत है और हमें आके खोलने की जरूरत है
1: जी।
0: जहां चाह वहां राह की बात बिल्कुल चरितार्थ होती है। तो अगर हमारे युवा साथी बुंदेलखंड की समस्या, अगर लोग, चूंकि 60% 70% आबादी हमारी खेती पर ही निर्भर है और हम दलालों के माध्यम चूंकि काम करते नहीं, ज्ञान नहीं है,
1: बिल्कुल सर,
0: उसके नाते हमें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है।
2: बिल्कुल सही बात कही आपने। और चूंकि अगर सर बात कर रहे हैं इसकी खेती किसानी की और जो प्रोडक्ट आपने बताए हैं, लेकिन समस्या सर आती है उनको मार्केट में किस तरीके से बेचा जा सकता है, इसके बारे में साथियों को कुछ अनुभव आप शेयर करें जरूर बताए।
0: कोई चीज बिकती कब है? जब क्वालिटी होती, क्वालिटी गुणवत्ता के लिए मैंने क्या कहा कि ज्ञान की जरूरत है, थोड़ा सा हम ट्रेनिंग है, अगर ट्रेनिंग और प्रोसेसिंग का काम हम सीख ले
1: जी,
0: तो बहुत अच्छे तरीके से हम मार्केटिंग का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो चीजें दिखती हैं वही बिकती हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: तो आपको अपने ब्रांड की ब्रांडिंग करनी, अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी ब्रांडिंग का कार्य करना होगा।
1: बिल्कुल सर।
0: जब तक आप उसको ब्रांडिंग नहीं करोगे, कोई चीज मार्केट में नहीं ले आओगे, तब तक उसकी वैल्यू नहीं बनती।
1: बिल्कुल सर।
0: बुंदेलखंड में बहुत सारी जो है ऐसी चीजें हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो आज भी नेचुरल रूप में ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ सबसे बड़ा रिच स्रोत है।
1: बिल्कुल।
0: यहाँ जो है जैविक खेती की बात जो सरकार कर रही है उसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है
1: जी।
0: यहाँ मार्केटिंग के रूप में उसको जो है लेने के लिए दिल्ली जो है सबसे नियरेस्ट मंडी है।
1: बिल्कुल सर।
0: दिल्ली है, भोपाल है, ग्वालियर है, MP के सटे हुए होने के नाते इसके पास व्यवसाय के बहुत सारे रास्ते हैं
1: जी।
0: अगर किया जाए इसके साथ साथ औषधीय पौधों की खेती भी की जा सकती है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो कार्य करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, सिर्फ हमको ट्रेनिंग और जानकारी की जरूरत है
1: जी।
0: अगर हमारे किसान भाइयों को ट्रेनिंग दी जाए उसके लिए हम लोग उपलब्ध हैं
1: जी।
0: जो इच्छुक हों लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं
1: जी।
0: वो हमसे सीधे संपर्क करें, हम उनको ट्रेनिंग दे बताएंगे और जगह जगह संस्थाएं
1: जी
0: उसके बारे में जानकारी देंगे। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं स्वरोजगार से संबंधित
1: जी,
0: उसके लिए किसान भाइयों को आगे आना

0: कार्यक्रम बना रही है, सिर्फ आंखें खोलने की जरूरत है और बाहर निकलने की जरूरत है। रोजगार युवा भाइयों, आपको पूरी जो है दुनिया आपकी है, आप मुट्ठी में कर लो दुनिया मुट्ठी में का नारा भी आप बुलंद कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान करिए और डर के आगे जीत है, डर को अपने निकालिए और आगे बढ़िए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथियों को चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन साथियों को जो बेरोजगार बैठे हुए हैं?
0: स्वयं का कार्य शुरू करिए, डर को निकालिए और आप छोटे से व्यवसाय को करेंगे, 1,000, 2,000, 4,000 रुपए की पूंजी से जो काम अपना करेंगे, धीरे धीरे पैसे बढ़ते जाएंगे और आप आत्मनिर्भर होते जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट के पास नौकरियां नहीं, नौकरी आपको डेवलप करनी है, इसलिए काम आपको करने होंगे। चीजें हमने आपको बताई कि रोजगार एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा है, कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको आपको ज्ञान होने की जरूरत है और उसके लिए प्रशिक्षण केंद्र खुले हुए हैं। गवर्नमेंट से स्वरोजगार योजना चलती है, उसके माध्यम से आप प्रशिक्षित हो सकते हैं, कृषि से संबंधित रोजगार कर सकते हैं और कृषि के अलावा भी आप काम करना चाहें तो गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हो।
1: जी बहुत बहुत सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद,
2: धन्यवाद। एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, अभी आपने संतोष पांडे जी को सुना और उनसे बहुत अच्छी जानकारी ली कि किस तरीके से खेती को हम व्यावसायिक तरीके से करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
3: बहुत सही कहा है आपने। और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे किसान साथी और ज्यादा मुनाफा खेती से कैसे कमा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि चावलों को एक बीन के अच्छे से तैयार करके, एक पैकिंग करके मार्केट में अगर आप इसको उतारेंगे तो अब बहुत अच्छी इसकी बिक्री भी होगी, साथ ही साथ आपका मुनाफा भी अच्छा होगा इससे।
2: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम आप देखते हैं कि किसान तो खेती करके वो अपना माल को बेच देता है, लेकिन जो व्यापारी रहते हैं वो उस माल को दुगने रेट में, जब बाजार में बढ़िया तरीके से उसको साफ करा के बेचते हैं तो दुगने रेट में बेचते हैं। तो क्यों ना हमारे किसान साथी इस तरीके का व्यावसायिक तरीके से खेती को करें, अपना अनाज स्वयं मार्केट में बेचे, अपने ब्रांड बनाए और छोटे छोटे समूह बनाकर, क्योंकि हमने एक कार्यक्रम में बताया था कि हथकरघा विभाग यानी हाथ से बनी हुई चीजों पर सरकार लोन उपलब्ध कराती है यानी पैसा उपलब्ध कराती है। तो आप ज्यादा पूंजी लगना नहीं है इसमें, छोटी छोटी पूंजी लगना है और मार्केट में इसको बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा हमारे साथी कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी योजना के साथ यदि देखा जाए तो किसान साथियों के लिए भी बहुत सारी योजना चल रही हैं। यदि अपना व्यवसाय खुद का करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और आगे इसको बढ़ा सकते हैं।
3: हालांकि साथियों को कुछ पता भी रहता है, किसान साथियों को, कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ रह जाते हैं वहाँ पे कि हमें ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, क्योंकि सही तरीके से काम कैसे किया जाए जब तक हमें कोई प्रशिक्षण नहीं मिलेगा हम लोग नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने पता भी बताया है कि अगर आप किसान साथी इस तरह का कोई प्रशिक्षण अगर चाहते हैं तो उनसे संपर्क करके आप एक बेहतर प्रशिक्षण ले सकते हैं और आगे चल के अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
2: तो साथियों, अब हमारा समय होता है इस कार्यक्रम आजीविका से जाने का। आजीविका में बेहतर और क्या कर सकते हैं, आपके सुझाव और आपके मार्गदर्शन की जरूरत होगी कि इस तरीके से हम एक नए तरीके से व्यवसाय कर आगे बढ़ सकते हैं। तो जरूर अपने सुझाव हमारे इस पते पर, चूंकि हमारे बहुत सारे श्रोता साथी ऐसे हैं जो फोन करने में हिचकिचाते हैं और मैसेज भी करते हैं लेकिन उनको चिट्ठी लिखने में बहुत मजा आता है। तो चिट्ठी के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए, हमारा पता है
3: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा।
2: और फोन करके भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं, फोन नंबर है हमारा
4: 9219207749।
3: साथियों, आप इस पे अपने सुझाव भी रिकॉर्ड करा सकते हैं, साथ ही साथ आप मैसेज भी इस नंबर पर कर सकते हैं और मैसेज के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आजीविका कार्यक्रम में और क्या नया बेहतर कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ी सी और जानकारी ज्यादा आपको मिल सके, या फिर कोई ऐसा आइडिया जो हमारे किसान साथियों के लिए या फिर हमारे युवा साथियों के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तो आपके मैसेज और पत्रों का रहेगा हमें इंतजार। अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
2: और मनीष को जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम आजीविका में मुलाकात, तब तक के लिए
3: नमस्कार।
2: और चल चलते आप सुनिए एक प्यारा सा गीत जिसे गा रहे हैं हर प्रसाद कुशवाहा और उनके साथी।

0: शुभ कल। बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: कार्यक्रम शुभ कल सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा,
2: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। साथियों, कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है शुभ कल कार्यक्रम।
1: यह कार्यक्रम रेडियो बुंदेलखंड और लोरियल फाउंडेशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है,
2: और ये श्रृंखला का 11वां कार्यक्रम आप लोगों के बीच हम लोग लेकर आए हैं। साथियों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत को कम होती ही है, इससे साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है, तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की इस स्पर्धा में जैविक उत्पादन अधिक खरे उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा कृषक भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे से होंगे। और साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने जाना था कि क्या कारण है कि लोग जैविक खेती क्यों नहीं करते हैं, वो आंकड़ों पर हमने एक नजर डाली थी। साथ साथ में हमने समुदाय से बात की थी, और विषय विशेषज्ञ द्वारा हमने जाना था कि लोग जैविक खेती करने में क्यों हिचकिचाते हैं। बहुत सारी बातें निकल के आई थी, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज बात करने जा रहे हैं कि जैविक खेती करने से हमें क्या लाभ है।
1: हमारे इन कार्यक्रमों के बनाने का उद्देश्य भी यही है, कैसे हमारे किसानों की दिशा और दशा में सुधार हो सके। इसके लिए हमारे किसान साथियों जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, खास तौर पर महिला किसान।
2: वर्षा, हमारे किसानों की दिशा और

0: दशा तभी सुधरेगी जब हमारे किसान साथी जागरूक होंगे, और जागरूक तभी होंगे जब उनके पास उस विषय की अच्छी तरह से जानकारी हो, और जानकारी तभी होगी जब रेडियो बुंदेलखंड पर इन कार्यक्रमों को सुनेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम भी उन किसान साथियों के लिए बना रहे हैं, और खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो दिन रात अपने परिवार के साथ खेतों पर मेहनत करती हैं।
1: अरे मनीष भैया, इनको समझाने के लिए हमारी बैरू भौजी ही काफी है, क्योंकि उन्होंने अपने लालाजू को भी समझाया। आइए चलते हैं बैरू भौजी के पास।

0: लालाजू, ओ लालाजू।
1: हाँ भाजी, बता क्या बात है?
0: क्या बात है लालाजू, आप तो बड़ी आराम से बोल रहे हैं।
1: ले भाजी, अब तक नेक आराम से बोलो, सो भाई बात।
0: का कह रहे हैं, कठिया के बोलो सो भाई बात।
1: अरे भौजी, तनक हमने कही के आज आराम से बतिया लिए, भौजी से वैसे तो लड़त रहता अपन।
0: अरे लालाजू, मैं जाके भी आई थी के ने तुम मे संगे चलो।
1: तुम्हारे संगे चलो?
0: हाओ।
1: काहे के लाने?
0: मैं हारे चलू ने तो।
1: हारे चलो?
0: हाँ।
1: ऐसो काहे ते हारे के हम हारे चले थे?
0: अरे लालाजू, मैं कह रही तो समझ लो, जरूरी काम है मुझे।
1: अरे भौजी, अब हम पढ़ रहे।
0: पढ़ रहे बाद में पढ़ ले, जो आखने मुझे जरूरी काम है वो हारे तुमसे मिल रहे हैं वो।
1: ऐसी क्या बात है, बता नहीं बता दे तो।
0: का कह रहे लालाजू, नहीं चल रहा है?
1: अरे जा कह रहे भौजी, के ऐसी क्या बात है, इतना ही बता दे, हारे जावे की क्या जरूरत है।
0: अरे लालाजू, अब तुम तो इतने पढ़े लिखे होंगे, अच्छी सी बता दूं ना, मैं का डाल लूं ई खेतन में, मुझे तो समझ में नहीं आ रही, मैं जे दवाई ले आऊंगी लेकिन इनसे का कोती मुझे कछु फायदा थोड़ी ना पड़ रहा है। और मैं सोच रही होंगी कि अगर तुम्हें कोनो दवाई याद हो तो तुम बता दो।
1: भौजी देखो, अब तुम हमसे तो ज्यादा जानते ही हो, काय में लगी हमारो ना कभी।
0: अरे लालाजू, फिर भी मैंने कही तुम पढ़े लिखे होंगे तो मैं तुमसे पूछ लेती होंगी, तुम्हें कछु नहीं आऊंगा।
1: अरे आओ तो है, लेकिन अब मैं खेती बाड़ी में थोड़ी जाना थी एक बात है।
0: अच्छा तो मैं तुम्हारी, चलो मैं तुम्हारी खेती देखे, तुम्हारी कैसी है?
1: हाँ हमारी देखे, हम तो दवाई दीजिए अपनी, ये चल रही है आजकल भी
0: दवाई देते ही।
1: चलो देखे यहाँ तो।
0: चलो चलो, तो पहले तुम्हारी खेती देखे आवे, फिर मैं अपनी देखूँ।
1: तो देख भौजी, देख जा बीबी आसो की अपनी फसल, लेकिन मैं तो किसानी से हार ही गया, लेकिन पढ़ भी जाने तो खेती करने तो जिनमें देखो जी, आजकल की दवाई चल रही है अपनी रासायनिक दवाई, जे देती मैं तो जी दुकान से ले लेके।
0: का कह रहे लालाजू, मर भी जाने या तो जा खेती ऊपर से प्राण खा रही?
1: मर भी नहीं, पढ़ भी जाने आओ तो ही।
0: हाँ।
1: कनक पुनक पढ़ भी जाने तो, और खेती भी करने संगे संगे। देखो अब किसानी को, गांव गाड़ों को काम है तो सब करने आते ही।
0: हाँ वो तो ये नहीं है कि लालाजू, मैं जा के रही तुम तो कहाँ डाल रहा थे, देखो तो जो भटन में कैसो कीरा मीरा सो लग रहा है वो, और काकुती आने से लग रहा है, कहाँ डाल रहा तुम इन्हें?
1: अरे भौजी, दवाई तो मैंने मुलकन दी अपनी बाजार से लिया लिया गए।
0: लालाजू मैं तो जा से आई थी देखन, मैंने कही कि तुम्हारी अच्छी हो जो उमदा को लालाजू अच्छी दवाई डाल रहा हूँ, मैं जाई वहाँ ने लालाजू की फसल तो देखे कैसी का हैगी।
1: अरे भौजी, तो ऐसी बातें कर रही कौन, मेरे घर है बन नहीं दवाई, अब मैं तो बाजार से लिया था, तुम जाने का करा था जुमून, मैं तुम्हारी देखे हूँ कैसी, तुम ज्यादा वो बता रही तो।
0: अरे चलो लालाजू, तो तुम्हारी से तो अच्छी मेज चाहिएगी, मैं तो जबकि देसी दवाइयों को इस्तेमाल कर रहे थे, मैं तो बड़े वास आई थी, अरे मेरे लालाजू की अच्छी उम्दा होते पढ़े लिखे है, अच्छी दवाई ले आते हूँ।
1: अरे भौजी, अब दुकान पे मिल जाता अपनी ये सब चीजें तो फिर काय को दिक्कत करो, जैसे बढ़िया दवाई मिला सिसिंगन में, दवाई नहीं मिला दुकान पे मशीन से किंच दो
0: रासायनिक
1: और
0: बाकी छत तो
1: भाई तो लिया
0: इतनी अच्छी कही वो हर लगे ना फटकर ही रंग चोखो हो जाए।
1: भौजी तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे ते अपने घर ही बनाते हो दवाई।
0: हाँ उसमें तो बनाते ही हूँ, माँ में कहा सके वो
1: कहा घर है बना।
0: हाँ जो जैविक दवाई है वो तो मैं अपने घर है बनाऊ तो, और अपनी बैगन में और चाइजों की फसल हो मैं अपनी उनमें डालत होंगी।
1: कैसी काय को मस्करी कर रही हो जी?
0: कहा कह रहे लालाजू, काय को मस्करी कर रही
1: और
0: तो मस्करी दिखा रही
1: और कही तो रही घर है बना दवाई बना वो हसी के लेगा।
0: हाँ लालाजू, मैं इनसे उम्दा दवाई बनाते हैंगी, जो रासायनिक दवाई जिनसे मैं जैविक दवाई बहुत अच्छी बना लेती होंगी।
1: अब तो भौजी चला ही नहीं आए थे यार, देखो
2: कैसे चलो तो देख लो मेरी फसल कैसी उम्दा लहलहा रही।
0: उना ये को कीड़ा लगो, कीड़ा के लाने और जाना बहुत हो तो मैं मुझे तो विशेषज्ञ बुला लेते हैं तो उनसे पूछत के कैसी देसी दवाई कैसे बनाऊ मैं
1: है?
0: जो अपनी चीजें है प्राकृतिक ईंधन से कैसे दवाई बनाऊ।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: तो अब तो चला ही नहीं आए तो हारे,
0: चलो देखो अब देखो लालाजू, जो तो लगो मे बैगन और जी अभी मैंने टमाटर की पौधे सुबह लगा दी।
1: वो भौजी तेरी फसल तो सांसों देख भी लाखेगी।
0: कहा कह रहे भौजी, तेरी फसल तो

0: ही उम्दा है
1: और मेरी फसल से तो बहुत ही उम्दा है।
0: हाँ तो लाला जी मैं तो यही सोच रही थी कि तुम्हारी उम्दा हो जाए, लेकिन मैं तो खुदा बड़ी खुश हो रही कि मेरी अच्छी हैगी। मैं तो घरे बना था अपनी सब,
1: लेकिन भौजी जी टपक जाए में मटका धरे जे खाएगी बस धरे चार पाँच
0: का कह रहे लाला जी टपज्जा में लोटा धरे
1: लोटा नहीं वे मटका धरे बट तू टपज्जा में।
0: हाओ लाला जी में मटकन से मैं मटका खाद बना थो।
1: मटका खाद
0: हाओ
1: वाह कैसी बना
0: ले लाला जी तुम्हें जो ही पता नहीं है। मैं अपनी सब देसी खाद डाल रहा था उनमें, जिसे उनमें उर्वरक जो अपनी खेत की जो उर्वरक शक्ति है और नमी है वह हमेशा बनी रहते और पैदावार भी अच्छी होते।
1: हाँ मैंने पढ़ा तो है ना तो किताबन में मटका खाद जी सब जैविक खादे बनी।
0: अच्छा
1: लेकिन तो, मैंने जब सोची नहीं है कि खुद बना सका।
0: अरे वो तो है ही बना सकते है। तो लाला जी अगली बार ध्यान करने कि दवाई घरे ही बनाने और घरे ही खाद बनाने उन्हीं को इस्तेमाल करने।
1: अब तो भौजी मैं तू जरूर सीख भी आऊँ जी दवाई बना।
0: बिल्कुल तो आज जो ट्रेनिंग ले अभी के लाने।

0: साथियों, सुना आपने बैरू भौजी को, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जैविक खेती के बारे में बताया कि अगर हमारे खेतों में कोई भी समस्या होती है तो उसके निजात पाने के लिए हम रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल ना करके घर से बनी हुई जो खाद होती है, जो दवाई होती है, जो हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं, उनको हम अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बेहतर पैदावार पैदा कर सकते हैं।
1: बैरू भौजी ने कितने अच्छे तरीके से जैविक खेती के बारे में बड़े अच्छे तरीके से समझाया और जो भी गिला शिकवा थे वो भी हमें दूर हुए। लेकिन हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ तक बैरू भौजी तक सवाल सीमित नहीं है, यहाँ पर सवाल आते हैं हमारे किसान साथियों के, क्योंकि किसान साथी जैविक खेती इस बुंदेलखंड क्षेत्र में क्यों नहीं करते हैं, उनके पास आपको ले चलते हैं, उनसे जानते हैं। क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि किसान अपने खेती की लागत इतनी ज्यादा लगाता है और उसके लिए कर्ज करता है, कर्ज होने के बाद साथ साथ में आज हम बैंकों की स्थिति देखते हैं तब पता चलता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो डिफॉल्टर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लागत भी नहीं निकलती है पूरे साल भर खेती करने के बाद। तो ये सारी पीड़ाओं को हम दूर करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, जैविक की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। लेकिन अब सबसे पहले हम अपने किसान साथियों के पास आपको ले चलते हैं और जानते हैं कि जैविक खेती क्या है, लेकिन कुछ विराम के बाद।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे दोस्त आराधना और बात करेंगे आज जैविक खेती क्या है। ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक और उर्वरकों, कीटनाशियों व खरपतवार नाशियों तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग ना करते हुए जीवाश्म युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है तथा मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाता है, उसे जैविक खेती कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।
3: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
4: ब्रजनंदन पाल कैना से।
1: ब्रजनंदन जी, आपने जैविक खेती के बारे में तो सुना होगा, तो जैविक खेती से लाभ क्या है?
4: जैविक खेती से लाभ यही है कि मतलब कुछ इनकम ज्यादा आती है, उसमें अपन को फायदा, जैसे मूंगफली है, मूंगफली उखाड़ी उसको तोड़ा बेचने के कंपनी, तो इसी के बारे में थोड़ी।
1: अच्छा, तो आपको कुल मिला के ज्यादा मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक चीज और जानना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि जैविक खेती करके अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं?
4: नहीं कर सकते।
1: चलिए, और आय को हम बढ़ा सकते हैं?
4: आय देखो, महंगाई तो बढ़ रही है, जमीन के ऊपर है, ऐसी तो थोड़ी ना बढ़ेगी, कुछ अलग तरीके की खेती करें तभी तो आय बढ़ेगी।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए।
5: सुरेंद्र पाल कैना।
1: अच्छा सुरेंद्र पाल जी, आप जैविक खेती के बारे में जानते होंगे, तो जैविक खेती से लाभ क्या है आपके हिसाब से, क्या लगता है लाभ क्या है?
5: हाल की स्थिति में तो जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गए, उड़द हो गए, चना हो गए, जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गई, सोयाबीन हो गया, उड़दा हो गया, मूंग हो गई,
1: ये जैविक खेती के उत्पादन।
5: हाँ हाँ, तो ये उत्पादन है, तो अगर इससे तो ये है, अगर मान लो 2-4 बीघा जमीन है किसी के पास, तो इस चीज से कोई लाभ नहीं है।
1: अच्छा, जैविक खेती करके हम अपनी खेती की लागत को कम कर सकते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है?
5: अपने हिसाब से जे है कि जैसे वो अपने हाथ में

0: अगर बरसात सही तरीके से अगर हो गई तो अपन लाभ ले सकते हैं। अगर बरसात नहीं हुई, किसी के कुएं में पानी नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, मान लो हम या आप ही हो गए कि भगवान के भरोसे रहते, अगर अभी पानी खुल गया तो मूंगफली में कुछ नहीं है, अगर बरस गया तो सब।
1: एक वर्ष आखिरी सवाल है कि जैविक खेती करके हम अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से, चूंकि आप खेती करते हैं।
0: खेती करके मान लो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं कि अगर कुआ अंदर पानी है तो टाइम से बो दिया, टाइम से पानी दे दिया और टाइम से खाद बीज लगा दिए तो अच्छी फसल उपजाऊंगी, तो अपन उससे लाभ ले सकते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा लाला राम जी आपसे बात करके, धन्यवाद।
2: हमारा नाम है रईस यादव, लुधौरा निवाड़ी विधानसभा से बोल रहे हैं।
1: अच्छा रईस जी, हम जानना चाह रहे हैं कि जैविक खेती जो होती है उससे करने से क्या लाभ है?
2: उससे ये लाभ है कि सबसे जल्दी पौधा अपना होता है, जो जो भटा है, टमाटर है, आलू है, जल्दी तैयार हो जाती है उससे। अच्छा, जो गोबर खाद सा है, गोबर खाद का मतलब जैविक खाद में थोड़ा मतलब बीमारी टाइप का तत्व रहता है, इसमें निर्दोखल रहता है मतलब गोबर खाद।
1: अच्छा,
2: जिससे आदमी बीमार कम पड़ते हैं।
1: अच्छा, आपको रही जी क्या लगता है कि जैविक खेती करके खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं आपके हिसाब से?
2: धीरे धीरे होगा, तो जैसे अपन को थोड़ी मात्रा में कम खाद दो इस साल, फिर पर साल अगले कम दो, और गोबर जो मान है गौ माता का जे ज्यादा मात्रा में देते जाओ, इसके बाद जो जैविक खाद देना बंद हो जाता है और फसल होने लगती है फिर।
1: अच्छा, जैविक खेती करके अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं क्या, आपके हिसाब से क्या लगता है?
2: हाँ, जैविक मतलब खाद से बढ़ती है आय,
1: आय बढ़ती है। कैसे बढ़ती है?
2: मतलब ऐसे है कि जैविक खाद अच्छी जैसी मात्रा में हर गुड़ाई जो खाद छिड़कते हो अपन,
1: अच्छा
2: पानी देते रहो, बढ़िया फल फूल, बढ़िया टुकड़ाई चलेगी उसकी।
1: धन्यवाद भाई साहब।
3: ब्रज किशोर कुशवाहा।
1: अच्छा ब्रज किशोर, हम एक चीज जानना चाह रहे हैं, जो जैविक खेती होती है आपके हिसाब से उससे को करने से क्या लाभ है?
3: हमें पता नहीं है,
1: जानकारी नहीं है जैविक खेती की?
3: नहीं है जानकारी।
1: अच्छा, जैविक खेती करके लागत को कम कर सकते हैं अपन लोग?
3: अब जी हमें पता नहीं है सर।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
5: साथियों, अभी आपने सुना कुछ किसानों की बातचीत को, जिनकी बातों से बिल्कुल पता चल रहा था कि कुछ किसान साथी हमारे ऐसे हैं जिनको जैविक खेती के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर जैविक खेती क्या होती है। लेकिन कुछ किसान साथी ऐसे हैं जिनको पता तो है कि जैविक खेती क्या होती है लेकिन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैविक को करने से हमारी फसल सही नहीं होगी या हमारी मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी, उनके अपने मन में जो भ्रांतियां चल रही थी। आइए, इन्हीं सब बातों को लेकर हम आपको सीधा ले चलते हैं विषय विशेषज्ञ के पास, लेकिन एक गीत सुनने के बाद।
6: जी।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और साथियों, आप अभी आपने कृषि से जुड़ा इस गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सीधा ले चलते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ के पास और जानते हैं जैविक खेती के उन सारे किसानों के जो सवाल थे, उन सवालों के जवाबों को।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
0: का सर मानना क्या है कि किसानों को जैविक खेती, अगर इस क्षेत्र में देखा जाए सर, मध्य प्रदेश में कुछ हिस्से ऐसे जहाँ पर लोग जैविक खेती करना ही नहीं चाहते, जब हम किसानों से बात करी वो नहीं करना चाहते हैं, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, एक बहुत वैसी बात हम आपको बता रहे हैं कि भारत ही नहीं पूरा विश्व आने वाले समय में जो खाद्यान्न संकट से गुजरने वाला है, 2050 तक पूरे विश्व की आबादी लगभग 10 अरब हो जाएगी, उसमें भारत की आबादी लगभग 1 अरब 70 करोड़ के आसपास हो जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने होगी कि हमको उत्पादन शक्ति बढ़ाना होगा और ताकि हम सभी लोगों को खाना उपलब्ध करा सकें। और जहां तक इस कृषि पद्धति की बात है तो इसे तो अपनाना ही होगा और इसके लिए उन्हें सहजता से उनके साथ संपर्क करके जो विशेषज्ञ लोग होंगे, कृषि विशेषज्ञ लोग होंगे, और उनसे मिलना होगा और उनको इसके जो फायदे हैं वो बताना होगा। तो जो अस्थायी कृषि है, आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, क्योंकि इसका इसके कई नाम से जानते हैं जाना जाता है, जैसे सतत खेती, पोषणीय खेती, प्राकृतिक खेती, परमा कल्चर, तो इसमें ये सेट ही है एक तरह से, आप देखिए ये पद्धति का सेट है, तो जो कि 3-4 शर्तों को पूरा करता है कि पर्यावरण का सम्मान करेगा, ये सम्मान होगा इसमें, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो जाएगी, किसानों का उचित और पर्याप्त आय भी सुनिश्चित होगा इसमें,
0: बिल्कुल।
2: और चूंकि वर्तमान में भू स्तर, जो जल का स्तर है वो गिरता जा रहा, ऑर्गेनिक कार्बन की भी मात्रा कम होती जा रही है, और भारत की जो कृषि पद्धति है या खेती हो रही है उसमें हमेशा से नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो कमी है वो हमेशा से रही है, तो इसकी पूर्ति करने के लिए लोग रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके विकल्प के तौर पे उन्हें प्राकृतिक खेती, ये अस्थाई कृषि अपनानी होगी और उसके फायदे उनको दिखेंगे। और चूंकि तुरंत उसका फायदा नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ समय बाद निरंतर वो 3-4 साल तक अगर उसको प्रैक्टिस में ले आएंगे फिर उसको उनका फायदा दिखने लगेगा।
0: सर आपका मानना क्या है कि जब हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं दूसरी ओर रासायनिक खेती की बात करते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है आपके हिसाब से?
2: जी देखिए, रासायनिक खेती, तो रासायनिक खेती में हमेशा जो संश्लेषित या कह सकते हैं हमेशा रसायनों का प्रयोग करके जो खाद बनाई जाती है और कीटनाशक बनाए जाते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, उनके प्रयोग से आप अंततः देखिए मनुष्य को ही नुकसान हो रहा है। आप बहुत सामान्य तरीके से इसको समझा जा सकता है कि जो यूरिया, डीएपी, एमओपी, ये सारे जो रासायनिक खाद है उनको डाला जा रहा खेत में, हर साल हर फसल के दौरान डाला जा रहा है, तो वो धीरे धीरे उसकी जो अन्य जो नकारात्मक तत्व है उसमें वो मिट्टी में बढ़ते चले जाते हैं, और जब कोई पौधा हम लगाते हैं, खेती करते हैं, तो उस पौधे की जड़ में, उसके तने में, उसके फल में, उसके फूल में, सभी में वो अवशोषित हो जाता है, और उसके बाद जब हम उसको, अगर कोई जानवर भी उसको खाता है और उसके शरीर में जाता है, उसका दूध हम पीते हैं, तो उसमें भी जो नुकसानदायक पदार्थ होते हैं वो हमें मिलते, तो हमारे शरीर में आ जाता है। हम डायरेक्ट जब सीधे तौर पे हम लोग उसका उपभोग करते हैं तो हमारे शरीर में वो नुकसानदायक पदार्थ आ जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे इन तत्वों का सांद्रण हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे जो जैसे कुछ भारी धातुएं, पानी, मृदा, वायु, सभी प्रदूषित होते चले जा रहे हैं इन कीटनाशकों और रासायनिक पदार्थों के अंधाधुंध प्रयोग से। इस तरह से जो सांद्रण बढ़ता है, चूंकि वो पता नहीं चलता है, लेकिन ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है खाना पीना, तो ऐसे में हमारे शरीर में इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, इसको हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, एक वैज्ञानिक टर्म है, तो इसमें पता नहीं चलता है लेकिन वो धीरे धीरे शरीर में एक स्तर तक पहुंच जाता है, और जब एक स्तर से ऊपर हो जाता है तो उससे नकारात्मक प्रभाव उसके दिखने लगते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। सकते हैं, जो इस समय आपको समाज में बहुत आसानी से दिख जा रहा है। सभी लोग किसी न किसी समस्या से ग्रसित होते चले जा रहे हैं खान पान की वजह से।
0: जी, अगर सर अगर फायदे की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो सर इसका जैविक खेती का फायदा क्या है, क्योंकि अभी रासायनिक जो हम लोग खाद डालते हैं उसका हमने नुकसान बताया है, फायदा क्या है जैविक खेती का?
3: जी, इसके अनेक लाभ है और उसमें सबसे पहले आप ये देखा जाएगा कि मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाएगी
0: जी।
3: उसमें जो पोषक तत्व है उसका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा
0: जी।
3: और जब इनका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा तो जो लाभदायक जीव
2: होगी और ऐसे टिकाऊ खेती में फसल का उत्पादन भी ज्यादा होगा और पशुओं का पालन पोषण भी अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि हानिकारक रसायन और कीटनाशक के प्रयोग से पर्यावरण पे अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, और जबकि उसके विपरीत जब आप टिकाऊ और ये प्राकृतिक खेती की जाएगी तो उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं दिखेगा। और टिकाऊ खेती करने पे देखिए लागत भी बहुत कम आती है
0: जी सर।
2: और पर्यावरण में प्रदूषण तो कम होगा ही, साथ साथ उत्पादन के साथ उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ का भी उत्पादन होगा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि अस्थायी कृषि लाभदायक होना चाहिए।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आशा है सर हमारे किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों के उनको अच्छे तरीके से जो आपने का जवाब जो दिया है का सर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सक्रिय श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
4: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपके आरजे वर्षा और आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती से होने वाले लाभ क्या क्या हैं। जी हां, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। जी हाँ साथियों, तो जाना कि जैविक खेती करने से कितने सारे लाभ होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए बाय बाय।
5: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम को। और साथियों अभी हमने जाना हमारे विषय विशेषज्ञ संजय कुमार जी से हमारे श्रोता साथियों और साथ साथ में किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों के जवाबों को जाना और जाना कि हम जैविक खेती से किस तरीके से लाभ ले सकते हैं और कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं।
4: साथियों के मन में बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो चल रहे थे और उनके काफी हद तक उनको जवाब भी मिल चुके होंगे, लेकिन श्रोताओं अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल चल रहे हैं तो हमेशा की तरह हमारा नंबर नोट करिए, क्योंकि हमारा नंबर जो है वो आपके सारे सवालों का जवाब देगा। जी हां श्रोताओं, उसके लिए आपको लिखना होगा हमारा नंबर जो है 9219207949। श्रोताओं आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या आप हमें पत्र के माध्यम से भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। साथियों अब समय हो चला है कार्यक्रम में सवालों का। जी हाँ, हम आपसे पूछने वाले हैं एक सवाल और जिसका देना होगा आपको सही जवाब। अगर आप देते हैं सबसे पहले और सही जवाब तो आपको मिलेगा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 की तरफ से एक खूबसूरत सा उपहार। तो साथियों आप तैयार हैं ना इनाम जीतने के लिए? चलिए जानते हैं हमारा आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? ये हमारा आज का सवाल है। और श्रोताओं पिछले कार्यक्रम का हमारा जो सवाल था

0: स्थायी खेती से क्या खेती की लागत कम की जा सकती है? ये हमारे कार्यक्रम का सवाल था और जिसका सही जवाब देने वाले हैं डालचंद कुशवाहा जी, और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक शब्दों में सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। तो इनको रेडियो बुंदेलखंड की तरफ से खूबसूरत सा उपहार जल्दी जल्द पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतने ध्यान से सुनने के लिए और हमारे सवालों में जुड़ने के लिए। आज का सवाल यानी कि कार्यक्रम का सवाल एक बार फिर से सुन लीजिएगा। सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? तो आज के इस सवाल से उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो भी श्रोता साथी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और इस सवाल का सही जवाब देंगे उनको हम अगले कार्यक्रम में उनके नाम के साथ शामिल करेंगे। चलिए श्रोताओं, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी आपकी और हमारी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत।
0: आपकी और हमारी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
2: शुभ कर्म, बदलती जलवायु के लिए।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम तमाम प्रकार की तरह तरह की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और करते भी चले आ रहे हैं। और कई दिनों से हम ये देख रहे हैं बहुत सारे हमारे श्रोता साथी हमें पूछते हैं कि सर कहीं पर अगर वैकेंसियाँ निकले तो हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे बेरोजगार हमारे युवा साथी ये भी कहते हैं कि नौकरी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में हमारे श्रोता साथी क्या कर सकते हैं, क्या एक उपाय होना चाहिए, क्या उपचार होना चाहिए इसका, कैसे हमारे युवा साथी अपना कैरियर यानी भविष्य बना सकते हैं। 12वीं की परीक्षा के परिणाम भी आ चुके हैं और हमारे विद्यार्थी साथी युवा साथी अब असमंजस में रहते हैं कि हमें आगे चलकर कौन सा विषय चयनित करना है, कौन सी पढ़ाई ऐसी करनी है, क्योंकि हाल में ही हमने देखा है कि बहुत सारे युवा साथी जिस तरीके की ट्रेंड चल रही है कि हमें बीटेक या एमटेक या फिर तमाम प्रकार के जो विषय रहते हैं उसमें अपना कैरियर भविष्य देखना चाहते हैं, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी क्षमता है, कौन सा ऐसा ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है जिसमें हम अपने हुनर दिखा सकें, जिसमें अपना भविष्य बना सकें। हमें बस सोचना ये होगा कि हमें क्या अच्छा लगता है, कौन सी पढ़ाई अच्छी लगती है। हाल में हमने देखा एक हमारे युवा साथी आए और हमसे कहने लगे कि आप हमें बीटेक में एडमिशन करा दीजिएगा, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि ये बीटेक सिफारिश से नहीं आपके टैलेंट से एडमिशन होते हैं, क्योंकि आजकल जो कट ऑफ होते हैं और जो मेरिट जाती है वो बहुत हाई जाती है। आपकी पढ़ाई, आपकी क्षमता जो आपकी है वो देखते हैं। हमने उनको, हमारे एक साथी हैं, उनसे हमने काउंसलिंग कराने के बाद ये नतीजा निकला कि हमें तो अकाउंटेंट में बहुत अच्छा अनुभव है, हम उसमें रुचि भी रखते थे लेकिन हम भटक गए हैं। तो ऐसे हमारे युवा साथी कभी नहीं सोचें कि हमें किस चीज़ में कौन कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है, उसका ध्यान ना देकर अपना भविष्य अगर बनाना चाहते हैं तो हो अपनी सोच और जिस विषय में आपके हुनर है उस विषय को लेकर आगे जाइएगा। बहुत सारी वैकेंसियाँ उसी में निकलती हैं, बहुत सारा भविष्य उसमें दिखता है। आज हम साथियों, हम कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में खुला आसमान चूंकि कार्यक्रम जाता है, वैकेंसियाँ रहती हैं उस पर बात करते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे विद्यार्थी साथी हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन समस्या उनको पैसों की आती है। तो पैसों की समस्या के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप आते भी हैं, मिलते भी हैं और अपना वो कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी विषय को लेकर हम आगे बढ़ाते हुए हमारे पास बडी फॉर स्टडी से बहुत सारे स्कॉलरशिप के लिए, भविष्य बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए स्कॉलरशिप अलर्ट जारी होता है, उसको आप लोगों के समक्ष पहुंचाने का हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने युवा साथियों से कहना चाहते हैं, यदि आप एग्ज़ाम जो राष्ट्रीय परीक्षा होती है उसमें आपने पास कर लिया है तो उसके लिए ऑल इंडिया अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप एंटेंट एग्ज़ाम 2026 एक राष्ट्रीय परीक्षा है जिसे पूर्व स्नातक छात्रों को सरकारी स्कॉलरशिप देने के लिए बनाया गया है। यह उन छात्रों के लिए है जो इंजीनियरिंग यानी बीटेक, बीई और मैकेनिकल कोर्स एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग
कि प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हैं उनमें आर्ट्स और कॉमर्स के पाठ्यक्रम भी शामिल है। आवेदन कैसे करें इसके बारे में भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बता रहे हैं। आवेदन उन सभी छात्रों के लिए जारी है जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा में न्यूनतम परीक्षा प्रतिशत और ग्रेड हासिल किए हैं। उसके लिए प्राइज मनी जो रहता है, रिवॉर्ड्स जो रहते हैं, वो है 2,00,000 तक का वार्षिक स्कॉलरशिप और एक प्रमाण पत्र। इस स्कॉलरशिप के इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको www.b4s.in/rv/aiug1 ये URL नंबर है, उस पर जाकर आप क्लिक करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म भी अपना इसमें डाल सकते हैं। दूसरा स्कॉलरशिप है वो है CBPS रिसर्च फेलोशिप 2026-27। CBPS रिसर्च फेलोशिप 2026-27 सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडीज द्वारा पूर्व स्नातक छात्रों को प्रदान की जा रही है। इसका उद्देश्य है कि स्कॉलर्स को शिक्षा, लिंग शासन, स्वास्थ्य, पोषण, सार्वजनिक वित्त, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में अपने रिसर्च कौशल को बेहतर बनाने के लिए सहायता की जाती है। यह फेलोशिप उन छात्रों के लिए जारी है जिन्होंने बैचलर डिग्री पूरी कर ली है या जो अपने पूर्व स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं। उनके लिए 25,000 तक का मासिक स्टाइपेंड और अन्य लाभ भी इसमें शामिल हैं। इसके लिए हमारे श्रोता साथी इस स्कॉलरशिप के इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक है www.b4s.in/rv/cbbs1, इस पर अपना फॉर्म डाल सकते हैं। अगले आगे बढ़ने से पहले स्कॉलर को आगे सुनने से पहले हम यहाँ पर एक विराम लेते हैं, एक छोटे से गीत को सुन लेते हैं। इसके बाद और भी हमारे साथ स्कॉलर अलर्ट के फॉर्म जारी हैं, किस तरीके से हमारे युवा साथी भर सकते हैं उस पर भी हम जानकारी देंगे, लेकिन इस गीत के बाद बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: अपने पिता से, वो आत्मा कह रही है,
1: पक तो आने से पहले ही ढल जाती मैं।
0: अरे वक्त आता मैं चली जाती, आप मुझे विदा कर देते, किसी गरीब के साथ में भेज देते, और अगर इसके बावजूद भी दिक्कत थी तब

0: श्रृंगार।
1: और कहने लगी कि अगर मैं होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में। अभी आपने सतीश जी और उनके साथियों की आवाज में इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। आगे बढ़ते हैं और हम स्कॉलर अलर्ट के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। तो अगला है कोटक जूनियर स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026-27। इसका कोटक एजुकेशनल फाउंडेशन द्वारा संचालित कोटक जूनियर स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026-27 जो कि कोटक महिंद्रा ग्रुप की सीएसआर क्रियान्वयन एजेंसी है, जो मुंबई महानगर क्षेत्र के उन मेधावी छात्रों को वित्तीय एवं शैक्षणिक सहायता प्रदान करता है जिन्होंने एसएससी, सीबीएसई और आईएससीई बोर्ड से कक्षा दसवीं उत्तीर्ण की है। चयनित अभ्यर्थियों को 21 महीने तक प्रति माह 3500 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिसकी कुल राशि 73,500 रुपए होगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों को मेंटरशिप और शैक्षणिक सहयोग, कैरियर मार्गदर्शन एवं एक्सपोजर विजिट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ अपनी शिक्षा जारी कर सके। आवेदकों को वर्ष 2026 में कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा एसएससी, सीबीएसई और आईसीएसई में कुल मिलाकर न्यूनतम 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त होना अनिवार्य है। आवेदकों ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र के जूनियर कॉलेज स्कूल में कला, वाणिज्य या साइंस स्ट्रीम में कक्षा 11वीं में प्रवेश लेना आवश्यक है। आवेदक छात्र के माता पिता की वार्षिक आय 3,00,000 या उससे कम होनी चाहिए। विद्यार्थियों का वर्तमान निवास मुंबई महानगर क्षेत्र में के अंदर होना चाहिए। कोटक एजुकेशन फाउंडेशन

स्टेशन तथा बड़ी फॉर स्टडी के कर्मचारियों के बच्चे आवेदन के पात्र नहीं हैं। कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के दौरान प्रतिमाह 3500 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। 21 महीनों के लिए कुल छात्रवृत्ति 73,500 निर्धारित है। इसके साथ विद्यार्थियों को मेंटरशिप सहयोग, शैक्षणिक सहायता, करियर मार्गदर्शन, एक्सपोजर विजिट्स जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसकी अंतिम तिथि है 30/6/2026। इसका स्कॉलरशिप के इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आगे दिए गए लिंक, जैसे कि www.b4s.in.rv/kjsp4, इस लिंक पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है साथियों, मास्टर्स यूनियन स्कॉलरशिप एम्पटीट्यूट टेस्ट 2026। यह प्रौद्योगिकी एवं व्यवसाय प्रबंधन, मनोवैज्ञानिक एवं विपणन और वित्त एवं अर्थशास्त्र, डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर बनाने वाले उच्च योग्यता, उच्च संभावनाओं से उक्त उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया अवसर है। वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष प्रवेश के साथ साथ ट्यूशन शुल्क छात्रवृत्ति प्रदान करता है। आवेदक वर्तमान में 12वीं कक्षा या किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड में नामांकित अथवा वर्ष 2025 में पूर्ण कर चुका हो। व्यवसाय प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, नेतृत्व, डेटा साइंस एवं AI डिजाइन, वित्त एवं अर्थशास्त्र, मार्केटिंग या फिर संलग्न क्षेत्रों में पूर्वकालिक पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम अध्ययन के इच्छुक हों। मूल्यांकन आवश्यक सभी आवेदकों को मास्टर्स यूनियन स्कॉलरशिप टेस्ट में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। डेटा साइंस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम के लिए वैकल्पिक पात्रता JEE में 90% से अधिक होनी चाहिए। MUSAT स्कोर्स 35 से अधिक होना चाहिए। SAT का स्कोर 1500-1600 से अधिक होना चाहिए। 10% से 80% शुल्क में छूट छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। इसके लिए www.b4s.in/rv/musacasp। अगला छात्रवृत्ति है वो वीवो पंजाब विद्या सेतु स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 है। द वीवो पंजाब विद्या सेतु स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 विगर मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की CSR की एक पहल है। पंजाब चंडीगढ़ के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले पूर्व स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता सहयोग प्रदान करती है। सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में सामान्य एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जारी यह कार्यक्रम शैक्षणिक उत्कृष्टता को पोषण तथा समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। छात्रवृत्ति पंजाब चंडीगढ़ के निवासियों और पंजाब चंडीगढ़ अधिवास पात्रता प्रमाण पत्र होने चाहिए। सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों से पूर्णकालिक पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययन होना चाहिए। आवेदकों को कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 70% से अधिक अंक होने चाहिए। माता पिता की वार्षिक आय सभी आय स्रोतों को मिलाकर 8,00,000 से अधिक नहीं होने चाहिए। छात्रों, दिव्यांगजनों, एकल अभिभावकों और बच्चों, अनाथ बच्चों, प्रथम पीढ़ी कॉलेज स्नातक छात्र को वैधता दी जाएगी। चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में सामान्य स्नातक के लिए ₹30,000 और व्यावसायिक स्नातक के लिए ₹60,000 का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप www.b4s.in/rv/

सकते हैं, और भी आपको युवा साथी या हमारे स्कूल छात्र छात्राएं विद्यार्थी यदि किसी विषय को लेकर आप चयनित नहीं कर पा रहे हैं तो सहायता आपको हम लोग कर सकते हैं आपका मार्गदर्शन देकर। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता साथी को यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनवे वारे हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपनी रेडियो दोस्त वर्षा की दो हाथ जोड़ के नमस्कार और राम राम पहुंच जावे भैया। और आशा करत हेंगे कि अपने सब श्रोता भैया बहन अच्छी तरह से हुए और ये मौसम में ये घाम से और ये गर्मी से अपनो बचाव अच्छी तरह से कर रहे हुए। अब देखो साथियों, जितने बचाव की बात आत हैगी, जितने अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखने की बात आत हैगी, तो अपन समझ जाते हैंगे कि अपने बीच में अपने साथियों के बीच में कौन सो कार्यक्रम आगा हुई है। तो आप समझे गए हुई हो कार्यक्रम अपनो है गो डॉक्टर की सलाह। ये कार्यक्रम में साथियों अपन और अपने स्वास्थ्य संबंधी चर्चा को करत हेंगे और जानत हेंगे कि अपने शरीर को ठीक रखने के लाने, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लाने अपन को का उपाय करें चाहिए, की तरह से अपन को रहें चाहिए, कैसे अपनी देखभाल करें चाहिए, साफ सफाई को कैसे ध्यान रखें चाहिए, साफ सफाई को का महत्व होते है वो अपने शरीर के लाने। तो इन सब बातन को जानबे के लाने अपन और ई कार्यक्रम को अपने साथियों के बीच में लेके आते हैंगे और यही विषय पे चर्चा करते हेंगे। तो साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपको आज के कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में। आपको बता देवे कि पहले जो कार्यक्रम यानी कि पिछली बार जो कार्यक्रम अपन और ने सुनो हतो रेडियो के माध्यम से डॉक्टर की सलाह, उमें अपन और ने जानो हतो कि अपन और लू से बचबे के लाने का उपाय कर सकत हेंगे। और जब बात अपन और ने कही हती कि अगले कार्यक्रम में अपन और डॉक्टर की सलाह भी लेंगे ई विषय को लेके, तो पिछली बार तो हमने और मनीष जी ने मिलके दो जन ने लू से बचबे के उपाय बताए थे आपको और साथ ही में लक्षण भी बताए थे कैसे अपनो बचाव कर सकत हेंगे। ई के बारे में भी चर्चा बहुत सारी अपन और ने करी हती और आपने सब साथियों ने सुनी भी हती। लेकिन साथियों आज हम आपको डॉक्टर विनोद यादव जी से बातचीत सुनवावे वाले हेंगे कि की तरह से अपने श्रोता साथी ई मौसम को देखत भय, लू लपट को देखत भय, कैसे अपनो ध्यान रखे। काहे कि देखो घर से बाहर जब भी निकलत ना तो ऐसो लग रहा हो कि जैसे ऊपर से बिल्कुल आग बरस रही हो। कछु ना पूछो, आज तो हम सही में हमें ऐसो लग रहा हो जब बाहर निकले ऑफिस से, देखो बाहर निकल के हमने तो बिल्कुल जा लग रही कि अपने जो किसान साथी हेंगे और जो मजदूर भाई हेंगे अपने, उनको ये मौसम में का हाल हो रहा हुई है। तो देखो साथियों हम अब आपसे ज्यादा तो कछु नहीं कह सकत हेंगे, काहे के काम अपन औरन को जो होते है वो तो अपन होकर नहीं आए है वो, लेकिन वो काम के संगे संगे अपन को अपनी सेहत को भी ध्यान रखने आए। काहे के अगर सेहत ना हुई है तो काम करवे को का फायदा है वो अपन को, है कि नहीं है? तो ऐसे जब भी अपने श्रोता साथी घर से बाहर जावे यानी के मजदूरी के लाने जावे या खेत पे अपने साथी जावे, तो बढ़िया पहले तो अपनी पेट पूजा कर लेवे। काहे के डॉक्टर साहब ने अपन को बताई है कि खाली पेट लपट लगवे के चांस ज्यादा रहेंगे। और जो अपने साथी खेत पे जा रहे हैंगे तो तौलिया अच्छी तरह से मुड़ी में बांध लेवे ताकि आपको घाम और लपट ना लगवे। और देखो हमने पहले भी आपसे कही थी कि छाता को उपयोग भी आप लोग कर सकत होगे। छाता को उपयोग केवल यही के लाने नहीं है कि आप बारिश के मौसम में जो है उको उपयोग करो, लेकिन आप धूप से बचबे के लाने भी उको उपयोग कर सकत होगी, क्योंकि घाम बहुत ज्यादा पड़ रहा है वो साथियों। सो ऐसे में अपन को जो जो चीजें ऐसी लगवे कि जिसे अपन बच सकत हेंगे, अपनी धूप को बचा सकत हेंगे, अपने शरीर को भी सब उपाय अपन और कर सकत हेंगे। तो देखो साथियों इन्हीं सब बातन के संगे आज हम आपको डॉक्टर विनोद यादव जी से मिलवावे वाले हेंगे, उनकी चर्चा को सुनवावे वाले हेंगे कि ये विषय में उनको का क्या वो है वो। तो अपन डॉक्टर विनोद जी से मिलत हेंगे, लेकिन उनसे मिलवे के पहले अपन ते एक छोटे से गीत के

संग मनोरंजन कर लेते हैं। काय के कार्यक्रम में जब तक मनोरंजन ना हुई तब तक अपने कार्यक्रम को आनंद ही नहीं आउते। तो पहले अपन श्रोता साथियों सुना थे एक बढ़िया से लोकगीत को जिखो गा रहे हैंगे रामनाथ अहिरवार जी। तो आओ सुना थे गीत को, गीत के बाद फिर से हाजिर हुई है आपके कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में।

0: रामनाथ अहिरवार जी की आवाज में अपन और अन्य अब एक बढ़िया से लोकगीत को सुन लो हैगो साथियों, और अपनो कार्यक्रम चल रहा हैगो डॉक्टर की सलाह। ई कार्यक्रम में साथियों अपन आगे बढ़त हैंगे और आपको डॉक्टर विनोद यादव जी की वार्तालाप को सुनवात हैंगे जो फोन पे अपने संगे हैंगे। और लू लपट से बचबे के लाने बे तरीका अपन को बता रहे हैं, सो अपन और सब जने ध्यान लगा के इनके बात को सुनबे।
1: सर नमस्कार।
2: नमस्कार
1: सर, सबसे पहले आपका परिचय हम जानना चाहते हैं।
2: डॉक्टर विनोद बोल रहा हूँ, झांसी मेडिकल कॉलेज से।
1: जी सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है कि लू लगने के क्या क्या कारण होते हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे सर कि आखिरकार लू लगने के कारण क्या होते हैं। सबसे पहले
2: जी तो लू लगने के कारण सबसे तो हमें धूप में ज्यादा तेज धूप में नहीं निकलना चाहिए, और उसके बचाव के लिए हमें हल्के सफेद कपड़े और हल्के कलर में पहनना चाहिए। जैसे कि घरेलू उपाय जैसे आम का पन्ना पीना चाहिए, बाहर निकलने पर साथ में पानी की बोतल लेकर के चलना चाहिए, बेल व नींबू का पानी पीना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में पानी की पूर्ति हो सके।
1: जी बिल्कुल, यानी कि जब भी घर से बाहर हम निकल रहे हैं तो साथ में पानी की बोतल
2: लेकर के चलना चाहिए। संभव हो तो गर्मी में सफेद कलर की, ज्यादातर सफेद कलर के कपड़े और हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में तचन ना हो।
1: अच्छा, यानी कि हल्के रंग के कपड़े पहने, सफेद अगर भले ही नहीं मिल रहे लेकिन हल्के रंग के जो होते हैं उन्हीं को पहनना चाहिए।
2: हाँ जी जी, धूप में निकलने से पहले जी शरीर में फुल कपड़े पहनना चाहिए, फुल कपड़े पहनना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर पूरा कपड़ों से ढक जाए।
1: जी जी,
2: उससे धूप से बचाव होता है जिससे कि हम लू से बच सकते हैं। दिन में खाली पेट बाहर ही निकलना चाहिए, धूप में कभी खाली कुछ ना कुछ खा करके ही बाहर निकलना चाहिए, खाली पेट नहीं निकलना चाहिए।
1: जी सर, इससे भी क्या लू लगने के चांस रहते हैं, जैसे आपने कहा खाली पेट नहीं निकलना चाहिए।
2: जब हम खाली पेट निकलते हैं लू में और हमें तेज तपन धूप पड़ती है तो हमारा शरीर से पानी निकलने लगता है, मतलब पसीने जो अपना आता है तो पानी की कमी हो जाती है
1: जी,
2: उसकी वजह से लू लग जाती है और थकान महसूस होने लगती है ज्यादा चलने पर, ये लू का कारण बन जाती है।
1: जी सर, ये क्या लक्षण होते हैं अगर किसी साथी को लू लग जाती है तो उसके लक्षण कैसे दिखाई देते, कैसे पता करें कि हमें लू लपट लग गई है।
2: लू लगने में हमें हल्का हल्का मुंह को सूखना, पानी प्यास ज्यादा लगना बार बार, कभी कभी लूज मौसम भी हो जाते हैं, ये सब कई प्रकार होते हैं, कई कारण होते हैं लू लगने के।
1: जी
2: गर्मी में हमेशा हल्का भोजन करना चाहिए, ज्यादा भारी भोजन नहीं करना चाहिए, हल्का भोजन लेना चाहिए।
1: जी
2: गर्मी में ग्लूकोज पीना चाहिए, थोड़ा बहुत एक बोतल में एक ग्लूकोज घोल करके दिन में जितने बार पानी पीते हैं तो अपने बचाव के लिए ग्लूकोज भी पी सकते हैं।
1: जी अगर सर कोई मार्केट वाला ग्लूकोज नहीं ला पाता है तो क्या घर में कोई ऐसा ग्लूकोज बनाने का उपाय है।
2: हाँ जी, जैसे धनिया है, हर धनिया को हम पानी में भिगोते हैं, गीला कर लेते हैं धनिया को, धनिया को महीन पीस करके उसको हम छानते हैं कपड़े से, उसमें थोड़ा चीनी मिलाते हैं, चीनी मिला करके उसको हम पीते हैं, उससे लू से तमाम प्रकार का बचाव होता है और हमारे शरीर में पानी की पूर्ति होती है। जैसे आम का पना है, आम को हम घर पे कच्चे आम को लेकर के पना बनाते ना
1: जी,
2: पना बनाते उसमें हम चीनी डालते और आम डालते
1: जी,
2: और उसे बढ़िया छान करके पीते हैं जिससे हमारी पानी की पूर्ति होती है।
1: जी यानी और गर्मी के मौसम में एक टाइम हम आम का पना भी खाते।
2: जी
1: सर,
2: गर्मी के समय हमें प्याज है, खीरा है, ककड़ी है, ऐसे चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में पानी की पूर्ति हो सके।
1: जी बिल्कुल सर, इस मौसम में क्या हमें तली भुनी चीजों का परहेज करना चाहिए।
2: परहेज करना चाहिए और बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए।
1: जी जी, अगर सर अगर किसी साथी को लू लग जाती है और वो ज्यादा टाइम तक घरेलू उपचार जो होते हैं उनको करते रहते हैं और फिर भी ठीक नहीं होते हैं तो क्या ये सही है।
2: हाँ हाँ सही है, ज्यादा समय होने पर ज्यादा टाइम हो जाता है, घर का उपाय करते रहते हैं और आराम नहीं मिलता है, तत्काल डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि कई बार होता है साथी हमारे ऐसा ही करते हैं कि घर में जो चीजें अवेलेबल होती हैं उनको ही उपचार के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं।
2: नहीं जाते लेकिन दिखाना चाहिए, अगर ज्यादा समय हो जाता है और हम ठीक नहीं होते घरेलू उपाय से तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी
1: है। जी बिल्कुल सर। सर एक और सवाल है थोड़ा सा कि जो हमारे साथी जो मजदूर भाई होते हैं अब उनको तो धूप में ही काम करना होता है, जैसे कि आपने बताया धूप में ना निकले लेकिन उनका काम ही धूप में निकलना होता है, तो क्या कोई ऐसा तरीका होता है जो वो इस लपट से इस धूप से बच सकें और अपना काम भी करते रहें?
2: देखो गर्मियों में जब ज्यादा धूप पड़ती है तो हमारे शरीर पर छोटी छोटी अटैच में हो जाती है, तो उसके लिए हम बचने के लिए बेसन को घोल बनाते हैं और उसमें प्याज नहीं पीस करके डालते हैं, अपने पूरे शरीर में लगाते हैं तो उससे हमारा बहुत बचाव होता है, धूप से बचते हैं।
1: जी तो यानी जो हमारे
2: लू से बचते हैं और जो घमौमियां होने का वो रहता है हल्की हल्की छोटी जो फुंसियां हो जाती हैं तो फुंसियां नहीं हो पाती हैं बेसन और प्याज के घोल से।
1: जी इसका घोल सर कितनी मात्रा में बनाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, क्या इसके कोई नुकसान है?
2: 50-50 की मात्रा में, जैसे हम 100 ग्राम बेसन लेते हैं तो 100 ग्राम प्याज होना चाहिए, उससे हमारे शरीर में थोड़ा ठंडक पहुंचता है, भगवानिया टाइप में लू से बचाता है।
1: अच्छा अच्छा जी सर, बहुत बढ़िया सर आपने बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से लू से बचने के लिए क्या क्या उपाय होते हैं और चलते हैं, और हमारे श्रोता साथियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर?
2: बस यही हम बधाई देना चाहते हैं सभी को कि हमेशा आम पानी की ये हमेशा बाहर निकलने से पहले एक पानी की बोतल साथ में लेकर के चलें और तली हुई चीजों से बचें, हमेशा थोड़ा ठंडे फल खाने की अपेक्षा करें।
1: जी बिल्कुल सर, सर आपने इतना अमूल्य समय हमारे साथियों को दिया, इतनी अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू वेरी मच।

एक बार फिर से साथियों आप सबके बीच में हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा। और साथियों अपनो कार्यक्रम चल रहा है डॉक्टर की सलाह। देखो अपन औरन ने कितनी बढ़िया नौनी सी बातन को जानो है गो डॉक्टर विनोद जी के माध्यम से, और उनने अपन को बताओ है गो कि अपने जो साथी घाम में काम करा थेंगे, घर से बाहर जा थेंगे काम करवे के लाने या फिर कछु और काम के लाने, बाहर भी जा थेंगे अगर, तो ध्यान रखवे के खाली पेट बिल्कुल भी ना करवे। कई के एक जो भी कारण

हो थे को लपट लगवे को अपन और जब खाली पेट घर से बाहर निकल जाऊंगे जा सोचत के अब रंदो तई जाके खा ले या फिर का के दिखाने नहीं आ इच्छा नहीं आ हमारी, तो जी अपनी छोटी छोटी सी गलती जो हो जाती हैंगी बे ई लपट खो बिल्कुल न्यो तो देती के अजाओ हमें लग जाओ ऐसा ही होत ना कि अपन कत नहीं आ बैल मुझे मार। तो यही कहावत खो ध्यान में रखत भाई अपन को का करने है वो के अपने जो भी साथी घर से बाहर जाऊ थेंगे तो वे खाना खा के जावे। और डॉक्टर साहब ने अपन को बताई है कि जब भी घर से बाहर जाऊ थेंगे तो पानी की एक बोतल अपने संगे जरूर रख लेवे ताकि आपको जितने भी प्यास लगे आप पानी पी सकत हेंगे और इके माध्यम से आपके शरीर में जो पानी की कमी हो जाऊ थेगी वा बिल्कुल भी ना हो पेगी। संगे में देखो अपन और जब लपट लग जाऊ थेगी तो सबसे पहले तो उपचार जो है अपन और घरेलू करत हेंगे, सब जने करत देखो हम भी करत हेंगे घरेलू उपचार के जैसे सक्सा मलत हेंगे है आम को पनो खात हेंगे और बढ़िया ठंडी ठंडी जगह में रत हेंगे ठंडे ठंडे फल खाऊ थेंगे पानी खूब अच्छी दम से पियत हेंगे। लेकिन साथियों जब अपन दो तीन दिन लगातार ये सब काम करत रहे घरेलू उपचार अपन करत रहेंगे और उसके बाद भी अपनी तबीयत में बिल्कुल सुधार नहीं हो पा रहा है वो बिल्कुल अपन को जा लग रही कि अब अपनी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही हैगी, तो अपन को ज्यादा देर नहीं करें चाहिए सीधे डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवाएं चाहिए। काहे कि देखो अपन और डॉक्टर तो है नहीं है। और रही घरेलू उपचार की बात तो पहले को समय पहले के वातावरण में और अबे के समय और वातावरण में बहुत फर्क आ गया है वो अपनो पर्यावरण बहुत बदल गया है वो तो ई के अनुसार अपनो शरीर भी बदल जाऊ थे वो। तो पहले जो अपन और अच्छी अच्छी हवा ले थे अच्छी अच्छी खान पियन ले थे शुद्ध शुद्ध ले थे भी आज के समय में नहीं आ। सो यही से पहले के समय में जो घरेलू उपचार होते भी फायदा भी करते खूब दम से अपने ऊपर, लेकिन अब अगर समय की बात करें तो वातावरण अपनो बदल गया है वो आसपास को जी की वजह से अपनो जो शरीर होते ही वे घरेलू उपचार को सपोर्ट नहीं करते यानी के अपने घरेलू उपचार से ठीक नहीं होते हैंगे। सो एक ही नाम है सबसे बढ़िया उपाय जो ही है गो कि भैया हरो देखो ज्यादा दिन तक घरेलू उपचार ना करवे अगर घर में काऊ को ऐसी समस्या हो जाए तो आप डॉक्टर के पास उखो जरूर ले जावे। कापतो के अपन और सोच रहे हैं कि लपट लग गई और उनको कोनो वरी बीमारी हो गई हुई कछु और समस्या हो गई हुई तो यही से डॉक्टर बनाए गए हैंगे कि डॉक्टर अपन को जांच करके अपने खून की जांच करके अपन को पूरी जानकारी बता देंगे कि इन्हें का परेशानी है काय वजह से ठीक नहीं हो रहे हैंगे और काय तो बुखार इतनो कमजोरीपन काय आ गयो है गो। तो इन सब बातन को हमारे सभी श्रोता साथी ध्यान रखवे काहे कि देखो मौसम बहुत ही खतरनाक चल रहा है गो अपन औरन के बीच में। तो अपने सब श्रोता भैया बहनन से जई कहबो है गो कि जब भी घर से बाहर निकलवे धूप में जावे आप अगर तो अपने सर से बढ़िया अच्छी तौलिया बांध लेवे। और का कहते एक बात और आपसे कहने हैगी कि जो अपने साथी भैया मोटरसाइकिल को उपयोग करत हेंगे और मोटरसाइकिल से जाऊ थेंगे तो देखो आप हेलमेट को उपयोग तो जरूर करियो और हेलमेट के अंदर भी अगर आप तौलिया बांध सको तो तौलिया भी बांधो ताकि जो खुली जगह रत हैगी आपके वो खुली जगह पे बिल्कुल भी घाम या लपट ना लग पावे। और साथ ही में आपको चप्पल पहन के नहीं जाने हैं। अब आप चप्पल की बात सुन रहे हो जो तो जाना सोचिए कोई बिल्कुल कछु पहन के नहीं जाने आपको आपको का करने है वो कि चप्पल की जगह जूता को उपयोग करने है गो कहे कि ऊपर को घाम इतना तेज लग रहा है गो कि अपने जो पाउन के ऊपर की जगह होती ना बे तचत है बिल्कुल ऐसी आग लगन लगत है कि कहा बताएं आपको। तो यही से आप जूता पहन के जाओ ताकि आपके पाँव सुरक्षित रहेंगे और आपको जो धूप हैगी वह बिल्कुल भी ना लग पेगी। साथ ही में साथियों देखो डॉक्टर साहब ने अपन को बताई हैगी कि ई मौसम में अपन को जो तली भई चीजें होती हैंगी इनको कम से कम सेवन करने हैं और हो सके अगर तो बिल्कुल भी ना करो काहे कि अपन और देखो जल्दबाजी में काम करत रहेंगे और जल्दबाजी में जब घर से बाहर निकल या उठेंगे घर से खाना नहीं खा के आतेंगे तो रास्ता में जो भी अपन को तली हुई चीजें मिलती हैं जैसे समोसा भजिया मोमोज यानी काका तरह तरह की चीजें मिल जाती हैंगी तो अपन सोचते कि चलो घर से खा के नहीं आए तो इनको खा के पेट भर लें अपनों। तो ई मौसम में खास तौर से जी तली हुई चीजन से अपन को कोसन दूर रहने है वो अगर ई समय पे अपन ने अपनो स्वास्थ्य को ध्यान दे लो है तो अपन बहुत बढ़िया अच्छी तरह से रह भी पाएंगे नहीं तो फिर आप सोच लो कि तबीयत खराब होने वाली हैगी। तो यही से आप सबसे जो ही कह वो है कि तली हुई चीजें ना तो आप खाओ ना अपने परिवार में अपने बच्चन को भी खान दो कहे कि मोड़ी मोड़ा भी बहुत जिद

होती, उन्हें भी शाम के रोज पापा घरे आ गए और बस उनने कहा समोसा खाना है हमें तो पापा से, पापा ने जल्दी पैसा दाए और मोड़ी मोड़ा गए जल्दी से लेके और खान लगी। तो जी नुकसानदायक चीजें होती जिनसे अपन को बचने हैं वो, और डॉक्टर साहब ने देखो बताई है कि अपन ई मौसम में जो है पानीदार जो फल होते ही उनको सेवन ज्यादा करवे ताकि अपने शरीर को ठंडक मिलवे, जैसे ककड़ी होते ही, खीरा होते ही, अब देखो का कहते ही खरबूजा आ रहा हो, तरबूजा आ रहा हो, ये सब चीजें अपन और थोड़ी थोड़ी मात्रा में खात रहे ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो पावे और पानी पर्याप्त मात्रा में बनो रहे, और जितने हो सके आप पानी पीवे, पानी में बिल्कुल भी कंजूसी ना करवे, जब समय मिले जब भी प्यास लगे तुरंत पानी पीवे, लापरवाही बिल्कुल ना करवे कि अबे नहीं तनक देर में पी लें या तनक देर में नहीं तनक और देर में पी लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने हैं वो आपको। और हो सके तो हल्के रंग के जो कपड़ा होते ही आप उन्हें पहनवे ताकि आपके शरीर को भी राहत मिलेगी। तो देखो साथियों अपने आज के कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में काफी वार्तालाप हो गई हैगी, अपन और अन्य डॉक्टर विनोद यादव जी को भी सुनो हैगो, उनके अनुसार अपन ने जो भी बातें सुनी हैंगी, कोशिश करें अपन और के ऐसे ही काम करवें और एक टाइम जो है वो अपन आम के पनों को सेवन करवें तो अपना स्वास्थ्य अच्छा बनो रहे, और प्याज को भी ज्यादा से ज्यादा सेवन करवें। साथ ही में साथियों अपनो कार्यक्रम से जाबे को देखो समय भी हो चलो है वो, सो अपन ही कार्यक्रम से चलत हैंगे, लेकिन दोस्तों आपको बताने है वो कि ई कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में जो अपनों ने बीमारी के बारे में जाना थे या मौसमी बीमारी जो होती उनके बारे में जाना थेंगे या फिर इसे हटके आपको कछु और भी बीमारी के बारे में जानने की जरूरत हैगी, आवश्यकता हैगी, तो आप हमें फोन के माध्यम से या फिर पत्र के माध्यम से जरूर बतावे, जरूर संपर्क करवे हमसे। ई के लाना साथियों अपना नंबर है वो 9219207749, ई नंबर को आप लिख लो साथियों, कहके ई नंबर के माध्यम से आप हमें बता सकत होगे कि जो कार्यक्रम आप सबको कैसो लगो है वो, जा लू के बारे में यानी लपट के बारे में जो जानकारी अपन ने डॉक्टर साहब से जानी हैगी, बा अपन सबको कैसी लगी हैगी, या फिर कछु और भी आप लू लपट के बारे में कंचाउत होगी कि और कौन कौन से तरीका होते ही लू से बचबे के लाने, तो वो भी आप हमें जरूर बता सकते हैंगे फोन के माध्यम से। काय के देखो साथियों अपनो एक समय होते है वो हर कार्यक्रम को, और उस समय अनुसार अपन और उनको चलने भी आउ थे वो, तो अब समय जैसे कि हो चलो है वो कार्यक्रम से जाबे को, लेकिन आपको जरूर बताने है वो कि जो कार्यक्रम आप सबको कैसो लगो है वो, ई पे अपनी राय सुझाव जरूर देने हेंगे। साथ ही में अगर अपने साथी को पत्र लिखवो चाहतेंगे कछु और अच्छी बातें कंचाऊ थेंगे, तो पत्र के माध्यम से भी वे अपन से जुड़ सकते हेंगे। ई के लाने अपनो पतो है वो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। अब देखो साथियों अपने रेडियो दोस्त वर्षा को देव जावे की इजाजत, काहे कि अपनो समय होगा हो कार्यक्रम से जावे को, सो अपनी फिर ये मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक हमारे सभी साथी ऐसे ही सुनत रहें रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपनो रेडियो अपनी बातें अपने रेडियो दोस्त वर्षा के साथ में। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहन को आपके अपने रेडियो साथी मनीष कार्यक्रम खेत खलियान में बहुत ही बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे किसान साथी उनको बता दें, वो चाहते हैं कि आज के हमारे जो कार्यक्रम खेत खलियान कार्यक्रम में आज बतकाव करवे जा रहे हैं कि हमारे किसान साथी कैसे हैं। जैसे में किसान साथी टमाटर की नर्सरी कौन तरीके से कर सकते हैं, अब ऐसे खेत की तैयारी कर ले और कौन तरीके से हमारे किसान साथी कौन सा बीज लगा सकते हैं, बाबे साहब बतकाव करेंगे। आपको बता दे, वो चाहते हैं कि खेत कल्याण

कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बतकाव को लेकर आते हैं और हमारे किसान साथियों को वो छोटी सी छोटी जानकारी उपलब्ध कराते हैं जो हमारे किसान साथियों की आय को दुगनी करने के लाने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती हैगी। खासतौर पर देखो जा रहा है कि अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में अब खंड खंड वर्षा होती हैगी और ऐसे में किसान साथी हमारे बहुत सारे किसान साथी जो खेती पर आश्रित रहते हैंगे तो ऐसे में हमारे किसान साथी का कर रहेंगे। तो खेती के संगे संगे चूंकि अब गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में जा वक्त बहुत ज्यादा धूप पड़ रही हैगी और हमारे किसान साथी फ्री बैठे हुई है तो अब किसान साथियों को अगली फसल की तैयारी कर ले चजित और अपनी आय तबई दुगनी हुए जब छोटी छोटी बातों को हम ध्यान करेंगे। जैसे कि खेत खाली हैंगे अपन नर्सरी भी कर सकते हैंगे और संगे संगे हम अपन फलदार वृक्ष भी अपन लगा सकते हैंगे अपने और नर्सरी भी लगा सकते हैं, फूलन की नर्सरी भी लगा सकते हैं। तमाम प्रकार के ऐसे विकल्प है खेती किसानी में जो हमारे किसान साथी करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैंगे। तो आज हमारे संगे विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सिंह जुड़ेंगे और वो बतकाव करेंगे और बताएंगे कि जब गर्मी के मौसम में हमारे किसान साथी कैसे अपनी टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं, कौन सा बीज और का का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से मट्टी को बनाना चाहिए, कौन सी खाद डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, पूरी जानकारी जो कार्यक्रम के माध्यम से सुनेंगे अपन। लेकिन जैसे पहले अपन कैसे मौसम आधारित अपन खेती करते हैंगे और मौसम का कुछ ठिकाना ही नहीं रहते कि कब बरसात हो जाए, कब जहाँ धूप न करे, ऐसे में हमारे किसान साथी अब का करबे तो मौसम आधारित खेती करबे। कार्यक्रम को आगे बढ़ात भय अपन एक 900 लोकगीत सुन ले रहे हैं और जाके बाद हम अपने विषय विशेषज्ञ के पास आपको लुवा चले और उनसे जाना है कि हमारे किसान साथी कौन तरीके से टमाटर की नर्सरी को खेती कर सकते हैं, कौन वैरायटी अपने खेतन में लगा सकते हैं। तो आओ सुनते हैं जो 900 लोकगीत को।

कहने लगी कि अगर मैं होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी, कहने लगी

0: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहनों को एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और अबे अपन ने जो 900 लोकगीत को सुनो, लोकगीत को आनंद लाओ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते भाई अपने विषय विशेषज्ञ के पास आपको लुआ चलाते हैं और उनसे जानते हैं कि टमाटर की नर्सरी हमारे किसान साथी कौन तरीके से लगा सकते हैं, का सावधानी उनको बरतने चजित आओ सुनते हैं जा चर्चा को। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे किसान साथी कौन तरीके से, अब चूंकि खाली खेत पड़े हैं तो टमाटर की बहुत ज्यादा महंगाई भी हैगी, टमाटर की नर्सरी कैसे लगा सकते हैं, कौन कौन बातन को उनको ध्यान में रखें जगजीत।
1: टमाटर हमारे भारतवर्ष के उत्तरी मैदानों में काफी खेती की जाती है और लगभग पूरे वर्ष भर इसकी मांग बाजार में बनी रहती है। तो अब आप देखें, अगर हमारे किसान भाई जो कि फरवरी मार्च की खेती कर रखे हैं, अब वो फसल धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है, तो अब मैदानी क्षेत्रों में जो टमाटर है अब इतनी गर्मी के कारण पकता है तो बिल्कुल लाल भी नहीं होता है, आप देखेंगे हल्का लाल रंग का बन जाता है, बस उसी पे तुड़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि टेम्परेचर जब 40 से डिग्री ऊपर होने लगता है तो उसमें पिगमेंट ही नहीं बनता है लाल रंग का लाइकोपिन, इस वजह से वो टमाटर लाल नहीं होता है। तो ये गर्मी का प्रकोप है, उसकी वजह से लाल नहीं बनता है। तो इस वजह से अब ये धीरे धीरे, वैसे भी वो फसल समाप्ति की ओर है, तो अब हमारे किसान भाई ये देखें, अब अगली फसल की तैयारी उनको करने का समय आ रहा है कि अब नेक्स्ट टमाटर की जो खेती उनको करनी है तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी सोचनी है, हमें कौन सी वैरायटी लगानी है, किस किस्म का चुनाव करना है और किस तरह से उसके नर्सरी की तैयारी करनी है, तो इस बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और अगर आप अभी से चुनाव करके उन किस्मों का चयन करके अपने पास उसके बीज उपलब्धता कर लेंगे तभी तो आप नर्सरी बनाएंगे, फिर आपकी फसल अच्छी होगी। तो आप देखें, ये जो हमारा आने वाला समय है उसमें एक बीमारी बहुत तेज आती है टमाटर के अंदर में, हमारे उत्तर भारत के मैदानों में, जिससे काफी क्षति पहुंचती है, उसको हम लोग पर्ण कुंचन रोग बोलते हैं टमाटर में, अंग्रेजी में लीफ कर्ल वायरस बोलते हैं। इसका प्रकोप बहुत अधिक होता है इस सीजन की खेती में, जो कि फरवरी मार्च वाले में कम होता है। तो और या तो फिर जो आपका समय है, आप अक्टूबर में जो बुआई करते हैं उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ये जून जुलाई वाला मौसम, जुलाई अगस्त में जो ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई आप करते हैं, इसमें अधिक से अधिक आपका ये पर्ण कुंचन रोग आने की संभावना होती है। तो आपको इस समय ये ध्यान रखना है कि जो किस्म का चुनाव आप करेंगे, वैसे तो टमाटर की खेती में बहुत सारी किस्मों का आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन आपको ये विशेष ध्यान इसीलिए मैं आगाह कर रहा हूँ कि जो पर्ण कुंचन रोग से रोधी किस्में हैं उनका ही आप चुनाव करें तो इस सीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। और अक्टूबर के मौसम के लिए तो बहुत सारी वैरायटीज हैं, उसको आप खेती कर सकते हैं। तो आप जब अभी बुआई की बात समय जो हम कर रहे हैं कि आप जून, मध्य जून से लेकर के पूरा जुलाई में आप इसकी नर्सरी की टमाटर की डालेंगे, तो उसके लिए जो उपयुक्त किस्में हैं कि आप देखें, पंजाब से हमारे जो कुछ किस्में निकाली गई हैं जो कि काफी बहुत ही अच्छी हैं और उनकी उपज भी अच्छी मिलती है और उनका साइज भी 80 से 90 ग्राम तक का होता है हर टमाटर का और लाल रंग के होते हैं और इसमें सीमित बढ़वार वाली फसल है, तो जिससे आपको बहुत ज्यादा ये सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है चढ़ाने की, तो आप खुले खेतों में उसकी खेती कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट वाला बोलते हैं। तो उसमें पूसा बरखा 1, पूसा बरखा 2 और पूसा बरखा 4, ये जो 3 किस्में हैं हमारे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने निकाली है जो बिल्कुल ही लीफ कर्ल वायरस रेजिस्टेंट किस्में हैं, ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। और इसी क्रम में हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, वहां से भी 2-3 अच्छी किस्में निकाली गई हैं जो इस सीजन के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इसमें है काशी यमन, काशी विशेष, काशी अमृत और एक हाइब्रिड किस्म भी उन्होंने बनाई है, अभी नई निकाली है, काशी अभिमान। तो ये जो 4 किस्में हैं जो काशी से निकाली गई हैं और 3 किस्में आपको पंजाब से निकाली गई हैं, ये इस बरसात के मौसम में जो आपकी फसल आएगी उसके लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है। उसका कारण सिर्फ यही है कि इस सीजन में पर्ण कुंचन रोग का प्रकोप बहुत अधिक होता है, तो जो दूसरी किस्में लगाएंगे आप उसमें लगाएंगे, लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट आपको बहुत करना पड़ेगा, बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके आप उस टमाटर से कुछ खेती से आप लाभ ले पाएंगे। तो हमारे किसान भाई आप देखें, अगर आप 1 हेक्टेयर टमाटर की खेती लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको 400 से 500 ग्राम बीज पर्याप्त होता है, लेकिन हाइब्रिड किस्म अगर है तो उसका 200 से 250 ग्राम बीज ही पर्याप्त होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और उसी हिसाब से आप इस बीज की

मात्रा को अपने पास सुलभ कर लें और किस्मों का चयन कर लें। आप देखें जो खुले खेत हैं, आपको टमाटर की खेती करनी है तो कम से कम आपको 10 क्यारी की आवश्यकता पड़ेगी, 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची। इस तरीके से आप 10 क्यारी बनाएंगे और हर क्यारी में लगभग 40 ग्राम के आसपास बीज की आप बुआई करेंगे तो आपके अच्छे पौधे तैयार होंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो इसलिए सबसे पहले आपको भूमि शोधन करने की जरूरत है, और भूमि शोधन दो प्रकार से होती है। एक तो यह है कि जो सौर हमारा इतना गर्मी का मौसम है, इसमें खाली आप अगर नमी है तो उसमें डाल दें, अगर लेकिन उसमें एक चीज और डाल दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसा मैंने फॉर्मलिन आती है आपको, फॉर्मल्डिहाइड नाम से भी आती है बाजार में, तो आप उस दवा को ले लें और 25 ml दवा 1 लीटर पानी में इस हिसाब से घोल के आप पूरे क्यारियों के ऊपर अच्छे से छिड़काव कर दें, जिससे कि उसमें नमी बन जाए। और नमी हो जाने के बाद जो सफेद पॉलीथिन की सीट आती है, चादर आती है, वो 15 से 50 माइक्रॉन वाली, उसको लेकर के आप उसको चारों तरफ से उसको ढक दें और साइड से इतनी मिट्टी से दबा दें साइड को कि उसके अंदर हवा पास न कर सके, बिल्कुल टाइट बंद कर दें। तो जो धूप पड़ेगी अंदर और नमी जो नीचे है उसके अंदर वाष्प पैदा होगा, और वाष्प होने से जो अंदर की जमीन के नीचे फफूंद या कीड़े मकोड़े हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। तो इससे काफी हद तक आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो आप जब इस तरीके से कर रहे हैं, उसके बाद आप उस पॉलीथीन को हटाएं। पॉलीथीन हटाने के बाद 1 हफ्ते तक पॉलीथीन को ढके रखिएगा, उसके बाद हटाएं। हटाने के बाद उससे थोड़ा सा फावड़े से लेकर के मिट्टी को खोल दें, हल्का सा गुड़ाई कर दें, तो जिससे उसके अंदर जो गैस भरी हुई है दवा की वो धीरे धीरे 4-5 दिनों में निकल जाएगी। उसके बाद फिर आप खेत की तैयारी करें और उसमें हर क्यारी में 15 से 20 किलो सड़ी गोबर की खाद आपके पास है या केचुए की खाद भी उपलब्ध है, तो जो भी है आप उसमें क्यारी में मिलाएं, और क्यारी में डालने के बाद उसमें हर क्यारी में 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट भी उस क्यारी में मिलाएं, छिटक दें मिट्टी में, और संभव है तो 10 ग्राम प्रति क्यारी फोरेट ये भी आप उसमें मिला सकते हैं, जिससे कि कोई जमीन में जो कीड़े होते हैं, कटुआ कीट होते हैं और कोई बोरर के कीट होते हैं, तो वो भी मर जाते हैं। तो इस तरीके से आपका खेत इसमें डाल करके बिल्कुल खेत को एकदम अच्छी से गुड़ाई करके घास खरपतवार निकाल करके बिल्कुल तैयार रखें और भुरभुरा हो बिल्कुल खेत, यह ध्यान रखना है। तो जब खेत बिल्कुल आपका तैयार हो गया और बीज शोधन, अगर आपने बाजार से बीज खरीदी है तो शोधित करके ही बीज आती है, अगर आपको शुद्ध बीज मिल रहा है बिना शोधित के, जिसका कि हल्के पीले कलर का बीज आपको दिखाई दे रहा है जो लगता है कि ये बिना ट्रीटेड है, तो आप चाहें तो उसमें कैप्टान 2 से 3 ग्राम 1 किलो बीज, जिसे आपने आधा किलो के आसपास ली है, तो एक चुटकी दवा सिंपल 1 से 2 ग्राम उसमें मिला करके बिल्कुल ऐसे ऐसे मिक्स करने के बाद तो वो बीज शोधन हो जाएगा उससे। फिर आप 5 सेंटीमीटर की कतारों में लाइनें निकालें हर क्यारी में और गहराई रखें 1.5 से 2 सेंटीमीटर की, तो उसमें फिर इस बीज को बुआई करें। बीज बहुत घना ना बोएं इस बात का ध्यान रखें, और जब बुआई कर लेते हैं आप तो उसके ऊपर फिर सड़ी हुई गोबर की खाद का जो मिक्सर है उसके ऊपर से ऐसे फैला करके उसको बराबर समतल कर दें, बिल्कुल समतल रखें ऊपर, जिससे पानी दें तो ऊंचा नीचा ना हो, कहीं पानी ज्यादा ना हो। और बुआई करने के बाद सूखी हुई घास अगर आपके पास है या पराली है तो उसके ऊपर फैला दें अच्छे से। ये दो काम करती है, नीचे नमी को संरक्षण रखती है और ऊपर से तेज वर्षा वगैरह हो गई तो वो अधिक पानी से बीज इधर उधर न बह जाए उसको भी बचाती है। तो इस चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा बीज का जमाव होगा। एक बात और ध्यान रखें, गर्मी का दिन है, हो सके तो सुबह या सायं ही पानी दें, दिन में और पानी ना दें। कभी कभी क्या होता है हमारे किसान भाई कि अगर आपने सब कुछ सुरक्षात्मक ढंग भी अपनाया हुआ है और लेकिन फिर भी मौसम के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो हमारे नर्सरी के अंदर कमर तोड़ वाली बीमारी जो डैम्पिंग ऑफ हम कहते हैं, तो वो आर्द्र गलन भी बोलते हैं, तो इस तरीके की बीमारी जो आ जाती है इससे पौधे जमाव के बाद नीचे गिरने लगते हैं, उनकी कमर टूट जाती है, बहुत पतली होती है। तो उसके लिए आप जब आप सिंचाई करते हैं, सुबह या शाम करना है खाली सिंचाई, तो उस पानी में 20 ग्राम डायथेनियम 45 10 लीटर में पानी के हिसाब से घोल बना करके आप उसको जब सिंचाई करते हैं उसी में छिड़काव किया करें। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप जो आपने सड़ी हुई गोबर की खाद डाली हुई है अगर उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम लगती है और नर्सरी के पौधे हमारे जो पीले दिखाई देने लगते हैं, तो उसमें आप 0.3% यूरिया का घोल छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि 3 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में घोल बना करके एक हल्की सी छिड़काव कर दें, तो जो पौधे हैं जो हमारी नर्सरी की पौधे उनकी रंगत पीले से उठ के हरे रंग की हो जाए।

0: लगेगी और फिर पौधों की बढ़वार बढ़ जाएगी। तो ये आपके काफी अनुभव पे निर्भर करता है, आप उसको देख करके समझ करके तब इन चीजों का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा डाइथिन भी नहीं डालें, अगर जरूरत है तभी डालें, नहीं तो सिर्फ आप पानी दें। और इस तरीके से आपका कम से कम 30 दिन की पौध 15 सेंटीमीटर के आसपास पौध हो जाती है जब, तो वो बिल्कुल रोपाई के लिए तैयार होती है। और उस पे आप ध्यान रखें, रोपाई से पहले 4-5 दिन तक पानी बिल्कुल नहीं देंगे। अब फिर जब आपको पौध उखाड़नी हो उस दिन आप पानी दीजिएगा, और फिर पानी निकालने के बाद हर पौध को आप कम से कम डायथेनियम 45 में या फिर इमिडाक्लोप्रिड भी कभी कभी डालना पड़ता है, कभी आपको चूसक कीट के भी प्रकोप दिखाई दे जाते हैं नर्सरी के अंदर भी, तो आप इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा है ये 3 ml दवा 10 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करेंगे, तो इससे किसी भी तरीके की चूसक वाले या अन्य कीट का प्रकोप नर्सरी में नहीं होगा और स्वस्थ पौध की उत्पादन होगी, जिससे अधिक से अधिक पौधे आपके मेन खेत में जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो उनका एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होगा और फिर अधिक से अधिक लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी।
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहन हो एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और साथियों, अब अपन ने डॉक्टर साहब से कितनी महत्वपूर्ण जानकारी को सुनो है गो, और अपन ने जानो कि कौन तरीके से हमारे किसान साथी नर्सरी कर सकते हैं, टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं, और संगे संगे कौन कौन सी वेरायटी हो सकते हैं। उनने पंजाब की कछु वेरायटी बताई है, कछु वाराणसी की वेरायटी बताई है जो बहुत अच्छे आपको उत्पादन देंगे, तो ऐसे ही वेरायटी अपन हो समझने हैं, सोचने हैं, तब अपने खेतन में लगाने हैं। अब तैयारी करवो बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और संगे संगे अपने खेत जो खाली पड़े हैंगे उनकी जुताई भी हमारे किसान साथी कर सकते हैंगे। हमें आशा है कि हमारे किसान साथी इन छोटी छोटी बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखें चाहिए उन्हों, कैसे आने वाला समय जो है बहुत महंगाई को हो जाएगा, कैसे अबे अपन देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अपन हो लगत लग जाएगी, और मुनाफा अगर देखो जाए यानी उत्पादन देखी जाए तो बहुत कम हैंगे। अब कृषि विभाग की ओर से बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही, योजना चलाई जा रही हैंगी, तो उनको भी अपन हो लाभ लेने, संगे संगे बीजन को चेंज जो अपन करते हैंगे तो कृषि विभाग की ओर से जो कृषि विस्तार अधिकारी रहेंगे उनके पास जाके अपन को संपर्क करने, उनसे पूछने हैं कौन तरीके को कौन सा बीज लगाना चाहिए, कौन तरीके से अपन को तैयारी करनी चाहिए। और संगे संगे एक महत्वपूर्ण बात और बतावा चाहते हैं कार्यक्रम के माध्यम से अपन को कि हमारे किसान साथी अभी चूंकि खाली खेत पड़े हैं तो अपनी मिट्टी को परीक्षण अवश्य करा ले, कैसे कौन से तत्व की कमी हैगी जो पता चल जाएगा, अगर जो पता चल जाए तो अपन देख सकते हैंगे, समझ सकते हैंगे, और अपन जाके भरपाई भी अपन कर सकते हैं कि कौन से तत्व की कमी है, अब जाके तत्व को पूर्ति करवे के लाने कौन सी दवा अपन को डालना चाहिए, कौन सी का कौन सी अपने हो बीज लगाना चाहिए, तो जैसे सारी जानकारी अपन हो उपलब्ध हो जाते हैं। अपने पास फैसिलिटी हैगी, अगर अधिक जानकारी आपको पाने हैं तो केबी के चले जाओ कृषि विज्ञान केंद्र, उतर जाके बहुत अच्छी अच्छी वेरायटी अपन हो उपलब्ध हो जाते हैं, उनसे ही पूछो, वैज्ञानिक रहते हैं उनसे भी सलाह लो, तभी अपन आने वाले समय में अपन अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। आप साथी रहो, हम समय होते हैं जा कार्यक्रम खेत खलियान कार्यक्रम से जावे को, तो कार्यक्रम आपको कैसो लगो हमें जरूर बताओ। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जा कार्यक्रम खेत खलियान से जावे की इजाजत, आपकी हमारी फिर हुई अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लाने नमस्कार, राम राम। अपने

0: Deli. नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और साथियों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक विधा को सुनते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों, आज भी अपन सुने एक बढ़िया सी विधा को और विधा को आनंद ले हैं। वह विधा है नौटंकी। जी हाँ दोस्तों, जब गांव में किया ब्याह शादी में नौटंकी आवे और नौटंकी की हवा ऐसी फैलत के हम का बताएं कि आज चलो फलाने की बारात में नौटंकी आ रही है। सो सब जने बिल्कुल नौटंकी देख के लाने बिल्कुल उताब ले रहे थे, बहुत ही तजारी से कि आज चलो कानन के लाने स्वापी बांध लो, हाथने में मोजा पहन लो, मुंडा पहन लो, चलो अपन को नौटंकी देखने है आज। सो दोस्तों, नौटंकी जब अपन देखा थे तो कितनी सुहानी लगत, कितना रात भर मन लगो रहा नौटंकी को देखने में। सो दोस्तों, आज यही क्रम में अपन सुनाई ई विधा नौटंकी को और नौटंकी को आनंद ले हैं। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो दोस्तों, आओ दिन न करत भय सुनते प्यारी सी नौटंकी को जी ये गा रहे हैं बनमाली वर्मा जी और उनके संगी साथी। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे।
1: सुनिए लाला,
2: कहिए भाभी।

0: मनवाया है लाला जी, सब में जहर मनवाया है।
1: यानी हमारे भाई साहब ने।
0: हाँ।
1: तो सुनो भाभी, अगर मुझे भगवान की यही कृपा है तो मैं भोजन अवश्य करूंगा।
0: नहीं लाला, ऐसा नहीं आप करेंगे।
1: अरे रहे जिंदगी, अगर मेरी जिंदगी मिली तो माँ भगवान से मेरी यही प्रार्थना होगी कि मुझे तुम जैसी माँ मिले।

तो आज भी अपन सुने एक बढ़िया सी विधा को और विधा को आनंद ले हैं। बा विधा है नौटंकी। जी हाँ दोस्तों, जब गांव में क्या ब्याह शादी में नौटंकी आवे और नौटंकी की हवा ऐसी

0: सारे ज्ञान के घाती बने हैं।
1: भोजन बनवाया है लाला जी, सब में जहर मिलवाया है।
0: यानी हमारे भाई साहब ने
1: हाँ।
0: तो सुनो भाभी,

0: भगवान की यही कृपा है तो मैं भोजन अवश्य करूंगा।
1: नहीं लाला, ऐसा नहीं आप करेंगे।
0: अरे रहे जिंदगी, अगर मेरी जिंदगी मिली तो माँ भगवान से मेरी यही प्रार्थना होगी कि मुझे तुम जैसी माँ मिले।

0: अभी
1: अगर आप ऐसा कहते हैं तो ठीक है, मैं परोस देती हूँ, लेकिन परोसने में मेरा दिल थर्रा रहा है लाला जी, आप तो भोजन मत करिए।
0: सुनिए भाभी, आप कहती हो कि आप भोजन करोगे तो मैं तुम्हारे साथ में अपने प्राणों निछावर कर दूं, नहीं तो ऐसा नहीं है।

0: महकाने में आप आ गए, ऐसा नहीं मत कहिए महाराज।
1: अच्छा चंपा सुनिए, मैं जा रहा हूँ और बाजार से एक शीशी लाकर देता हूँ और सारे भोजन में चाहे मिला दो और हजलों को खिला देना।
0: नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं करिए महाराज, नहीं। ए बांदी, जा मेरे लाला हरदोल को बुला के ला।
2: जाती हूँ लाला जी। चलिए, तुम्हारी भाभी ने याद किया है।

0: हमारे जान के घाती बने हैं।
1: हाँ लाला, जितना ही भोजन बनवाया है लाला जी, सब में जहर मिलवाया है।
0: यानी हमारे भाई साहब ने।
1: हाँ।
0: तो सुनो भाभी, अगर मुझे भगवान की यही कृपा है तो मैं भोजन अवश्य करूंगा।
1: नहीं लाला, ऐसा नहीं आप करेंगे।
0: और रहे जिंदगी, अगर मेरी जिंदगी मिली तो माँ भगवान से मेरी यही प्रार्थना होगी कि मुझे तुम जैसी माँ मिले।
1: हाँ।

0: कहिए भाभी।
1: अगर आप ऐसा कहते हैं तो ठीक है, मैं परोस देती हूँ, लेकिन परोसने में मेरा दिल थर्रा रहा है लाला जी, आप तो भोजन मत करिए।
0: सुनिए भाभी, आप कहती हो कि आप भोजन करोगे तो मैं तुम्हारे साथ में अपने प्राणों निछावर कर दूं, नहीं तो ऐसा नहीं है।

0: हाँ देखो दोस्तों, जहाँ अपन सब जनन ने सुनी है नोटंकी, ई नोटंकी को आनंद लव है दोस्तों। ई नोटंकी को गा रहे थे बनमाली वर्मा जी और उनके संगी साथी। आप साथियों, एक क्रम में हम आप सब जन को बता देवे कि आज के ई कार्यक्रम विधा बुंदेली से आपके दोस्त माता दीन भैया जी को जाबे को समय हो गो है। सो अपने दोस्त माता दीन भैया को दो ई कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात ई कार्यक्रम में ई बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार। विधा बुंदेली। नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। सो दोस्तों, आप सब जन को जे आज के कार्यक्रम कैसे लगे? अब दोस्तों, आज की सभा इतनी संपन्न होत है। सो चलत चलत आपों ने लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आपों ने फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सके। दोस्तों, हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतना समापन हो गए को समय हो गए है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।